0: They're trying to find holes, but you know, okay, there is 7.8% growth, but where are the jobs? And everywhere I go.
1: जो लोग जीडीपी का चाहे आपने नाम ले लिया कांग्रेस कांग्रेस हो या जो लोग हों, या तो जीडीपी का ज्ञान नहीं है। 2014 से लेकर के कोरोना के काल से लेकर के खाड़ी युद्ध से ले जीडीपी को कभी गिरने नहीं दिया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व्यवस्था में, और देश आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर जा रहा। हाँ, कुछ लोगों का भारत का हित भी अच्छा नहीं लगता, उनके मुंह पर बढ़ते हुए जीडीपी एक तमाचा है।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भी भारत जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें तमाम निराशावादी जो सदा सर्वदा भारत की अर्थव्यवस्था में नकारात्मकता ढूंढना चाहते हैं, भारत की सेना में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं, भारत की संस्कृति में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं, धर्म में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं और हर वर्ग को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ऐसे विपक्षी नेताओं के अरमानों पर गाज गिरी है। जब भारत ने 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज की है, जो विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था।
3: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान, सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
4: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और यह हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
5: और जाए तो राम टेम्पल ट्रस्ट हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एवर सीईओ एंड द चॉइस इज अ डेकोरेटेड फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा हु सर्व्ड फॉर 38 इयर्स इन द आईएएफ एंड कमांडेड द वेस्टर्न एयर कमांड। ही विल नाउ ओवरसी द टेम्पल्स ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मिश्रा ऑल्सो सर्व्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, बट द अपॉइंटमेंट हैज नाउ ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल रॉ। Congress and the opposition parties are questioning why a retired air marshal was chosen for temple administration, with some asking why a religious figure or saint was not appointed for the post. Congress's Udit Raj has injected the caste angle and asked why a person from the SC/ST or OBC community was not picked for the post. The BJP, however, has welcomed the move, saying that the new CEO will bring greater transparency and even better administration. Let's track some more updates on this for you. You know, an important story coming in from commanding India's Western Air Command during Operation Sindoor to now taking charge of the Ram Mandir Trust, the most important administrative responsibility. Air Marshal Jitendra Mishra has been appointed the first CEO of the Trust, a fighter pilot, a test pilot, a military commander, and now the man tasked with bringing discipline and accountability into the temple administration. Take a look at this special report that breaks down all the details for you.
6: For more than four decades, Air Marshal Jitendra Mishra operated where the margin of error was almost zero. From the cockpit of fighter aircraft to the command of India's Western Air Command, and now to the helm of the institution entrusted, appointed as the first ever CEO of the Ram Mandir Trust. Air Marshal Mishra was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force in 1986. An alumnus of the National Defence Academy and the Air Force Academy with more than 3,000 hours of flying. Over 18 types of fighter and transport aircraft and helicopters. His operational record goes back to the Kargil War. As a squadron leader, Mishra was part of the team that operationalized laser-guided bombs on the

0: पैसा वापस आएगा भगवान के दरबार में। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो चंपत राय बंसल हों, चाहे वो अनिल मिश्रा हों, गोविंद देव गिरी हों, चाहे वो गोपाल राव हों, और जो मंदिर निर्माण ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा जैसे महाचोर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल भेजेंगे।
1: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो। अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होकर बाहर निकलेंगे, क्या तमाशा है भाई। जब मंदिर का काम मंदिर वालों को करने दो, अब आरएसएस वालों को तो पैसा दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर पे चढ़ रहा है खूब दबा करके, देखो उसके ऊपर। अभी देखिए ये तो हमारे हमारा विषय नहीं है, अभी तो साधु संतों के साथ ही पूजा पाठ अर्चना का काम तो साधु संतों का है, उन्हीं पे रहने दो।
2: The Honorable Prime Minister has to speak when he has had made a big hullabaloo of inaugurating the Ram Mandir. People have looted the money. Are they made accountable? Are they punished? He is not even speaking a word. Now Uttar Pradesh elections are coming. The Chief Minister and Prime Minister has colluded and bringing in a retired Chief Air Marshal, seeing the people attention diverted so that they can win the election again. The law demands the people who are responsible for looting the money given by the people across India in the name of Lord Rama, those people should be accounted, they brought to justice, they should be punished first.
3: Ram Mandir mein चढ़ावे के हिसाब किताब के लिए, उसके देख रेख के लिए सीओ बनाया गया सेना के रिटायर्ड अफसर को। इसका मतलब अब सरकार को, मोदी जी को, भाजपा, आरएसएस, वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए। अब दबाने के लिए लाख कोशिश करे, लेकिन देशवासियों के आस्था को ठेस तो पहुंचा ही दिया है।
4: एक मिश्रा गए, दूसरे मिश्रा आए, पहले नृपेंद्र मिश्रा जी थे, अब जितेंद्र मिश्रा जी आ गए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और ये कोई पुजारी का पोस्ट नहीं है, तो क्या जरूरी है कि एक ही जाति का आदमी सक्सीड करे? एससी एसटी ओबीसी से भी कई ऐसे कॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि बात तो लीकेजेज को मैनेज करने की है, क्योंकि पूजा पाठ का तो मतलब है नहीं इनका। तो इसी से लगता है कि जहाँ पर फायदे वाली पोस्ट है वहाँ ये लोग खुद बैठ जाते हैं।
5: समाजवादी पार्टी पूर्व वायुसेना उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्र जी को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि सेना के जितेंद्र मिश्र जी को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाएगा, जो सुपर बॉस लोग हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे, और जो ट्रस्ट है वो उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने दे।
6: श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है एक फौजी को। मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे जितने हैं ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सभी चोर हैं, तो फौजी और चोर के अंत के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है और इनकी चोरी अभी भी नहीं रुकेगी। हमारा मानना है कि वहाँ पूरे चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, भगवान राम के घर में डाका डालने वाले लोग हैं। फौजी को आगे करके ये अपना जो गंदगी है वो साफ करना चाहते हैं।
7: After begins at the Ram Mandir Trust, retired Air Marshal Mishra has now been appointed as the new CEO. In his interview with NDTV, he calls it a chance to serve the nation and says that it's Prabhu Shri Ram's order. Here's an exclusive conversation. Listen in.
8: You just retired from the Air Force. How do you feel about this new role?
9: I consider myself very fortunate that Prabhu Shri Ram has given me this opportunity to... Having given me an opportunity for 40 years to serve the nation, now I've got the opportunity to serve the Shri Ram temple and the Shri Ram Bhats.
8: As someone who has spent so many decades as a combat aviator, you were a hero during Operation Sindhu. Tell us a little bit about what the warfighter in you is looking forward to in this new role, sir.
9: So, you know, the responsibilities of the CEO are available in the open domain. I have seen them and I find myself capable of undertaking them. But along with that, I'd like to thank the search committee, the trust, and of course, for the

0: इंडस्ट्री की सूरत।
1: यहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं रह रहे हैं, मुझे ये बताइए, यहाँ सब अफसर बाहर से हैं जो हिंदू हैं, आपके पुलिस के DIG, DG, SP, डिस्ट्रिक्ट के SP हिंदू हैं, हैं DC हिंदू हैं, उन्हें क्यों नहीं थ्रेट आ रही? जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारा पुलिस है, सारा यहाँ का मामला है, वो क्यों नहीं देता है जवाब इसका? उसे पूछिए ना कि कहाँ से आ रहा है, कौन थ्रेट दे रहा है। मैं तो उनसे आरोप लगाता हूँ, यही लोग थ्रेट दे रहे हैं और यही थ्रेट के जिम्मेदार हैं।
2: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब,

0: अभी तो साधु संतों के साथ ही पूजा पाठ अर्चना का काम तो साधु संतों का है, उन्हीं पे रहने दो।
1: ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज टू स्पीक व्हेन ही हैज हैड मेड ए बिग हलचल ऑफ इनॉग्रेटिंग द राम मंदिर। पीपल हैव लूटेड द मनी, आर दे मेड अकाउंटेबल, आर दे पनिश्ड? ही इज नॉट इवन स्पीकिंग अ वर्ड। Now Uttar Pradesh elections are coming. The Chief Minister and Prime Minister has colluded and bringing in a retired Chief Air Marshal, seeing the people attention diverted so that they can win the election again. The law demands the people who are responsible for looting the money given by the people across India in the name of Lord Rama, those people should be accounted. They brought to justice. They should be punished first.
0: Ram Mandir mein चढ़ावे के हिसाब किताब के लिए, उसके देख रेख के लिए सीओ बनाया गया सेना के रिटायर्ड अफसर को। इसका मतलब अब सरकार को, मोदी जी को, भाजपा, आरएसएस, वीएचपी के लोगों पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए। अब वो दबाने के लिए लाख कोशिश करे, लेकिन देशवासियों के आस्था को ठेस तो पहुंचा ही दिया है।
2: एक मिश्रा गए, दूसरे मिश्रा आए। पहले नृपेंद्र मिश्रा जी थे, अब जितेंद्र मिश्रा जी आ गए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और ये कोई पुजारी का पोस्ट नहीं है। तो क्या जरूरी है कि एक ही जाति का आदमी सक्सीड करे? एससी एसटी ओबीसी से भी कई ऐसे कॉम्पिटेंट हैं। क्योंकि बात तो लीकेजेज को मैनेज करने की है, क्योंकि पूजा पाठ का तो मतलब है नहीं इनका। तो इसी से लगता है कि जहां पर फायदे वाली पोस्ट है वहां ये लोग खुद बैठ जाते हैं।
3: समाजवादी पार्टी पूर्व वायुसेना उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्र जी को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि सेना के जितेंद्र मिश्र जी को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाएगा। जो सुपर बॉस लोग हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे और जो ट्रस्ट है वो उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने दे।
4: श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है एक फौजी को। मेरा अपना मानना है कि वहां पे जितने हैं ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सभी चोर हैं। तो फौजी और चोर के अंत के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है और इनकी चोरी अभी भी नहीं रुकेगी। हमारा मानना है कि वहां पूरे चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, भगवान राम के घर में डाका डालने वाले लोग हैं। फौजी को आगे करके ये अपना जो गंदगी है वो साफ करना चाहते हैं।
5: हमारे साथ वारिस पठान है। जिस तरीके से चीजें सामने आई, कमेटी बैठी है और आज जाकर सीईओ का, पहले सीईओ का अपॉइंटमेंट होता है और साथ ही साथ तीन ट्रस्टी भी अपॉइंट किए जाते हैं, ये जो डेवलपमेंट है कैसे देखते हैं?
6: देखिए, सबसे पहले तो हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र रच के शहीद कर दिया। उसके बाद एक भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उस भव्य राम मंदिर के अंदर आपने एक ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट में इतना बड़ा आपने घोटाला कर दिया। यकीन मानो, मेरे हिंदू दोस्त लोग मुझे फोन कर करके बोल रहे, वारिस भाई ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हमारी आस्था का कत्ल कर दिया है लोगों ने। करोड़ों का आपने घपला किया, 1200 करोड़ से भी ज्यादा का घपला दिख रहा है। एक एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, वहां पर एसआईटी अपॉइंट हुई थी, उस रिपोर्ट में दर्शाता है कि 70 से ऐसे उनके पास एविडेंस है जिसमें बता रहे किस तरह से चंदा लोग चोरी कर करके भाग रहे। और इतना ही नहीं, एफआईआर किया आपने 8-9 लोगों को, उसके अंदर ये किया। चंपत कहां चले गए? उनका तो पता ठिकाना ही नहीं। आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे, लेकिन जो मेन थे वो तो भाग गए। अभी ठीक है, आपने अच्छा किया, सीईओ अपॉइंट किया, दूसरे लोगों को आपने अपॉइंट किया, लेकिन जो चोरी हुआ, जो चंदा हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ था वो आपने खा गया। जो प्रभु राम के नाम पे दिया गया था वो आपने खा गया, उसके बारे में क्या? उनको कब सजा मिलेगी? उन पर कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? तो ये जनता तो ये सवाल कर रही है ना, अपॉइंट करिए आप। लेकिन जो इस टाइम पे ये हुआ, जिन लोगों ने इतना बड़ा घफला कर दिया, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना इनके बारे में, बीजेपी के बारे में, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे।
7: I heard some air marshal has been appointed over there इट्स ओके, बट देन इट डजंट मीन यू नो जो कुछ भी करोगे आप उसका ये नहीं मतलब होता है कि पहला गुनाह माफ हो गया। चोरी की है भैया तभी तो हमें एयर मार्शल बिठाना पड़ रहा है, अगर चोरी ना करते तो ये बिठाना पड़ता क्या?
8: A retired person coming in and holding a very important crucial position like a CEO of the Ram Mandir Trust and all raises questions, but that is a part of the issue. But the real issue over here is that what happened to the Chanda Chori? What happened to the Ram Temple donation theft? Millions of Ram devotees are hurt by what had happened over there. And this has been happening for the last 2-3 years regularly. Now, there is this man called Chambat Rai. We all knew that Chambat Rai was directly involved in this Ram Temple theft. But there is no investigation qua this Chambat Rai. Was there an investigation into his bank accounts? Was there an investigation into how the money has been trailed from this account to that account? Nothing has been done by the government. Now, so therefore, to distract the Ram devotees from this Chanda Chori, now they have brought in a new CEO and a set of board members over there.
9: पूर्व एयर मार्शल आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी प्रभु श्री रामलला मंदिर के नए सीईओ होंगे। मैं उनकी नियुक्ति पर उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु रामलला ने जिस ढंग से उन्हें आशीर्वाद दिया है, मैं कह सकता हूं कि श्री जितेंद्र मिश्रा जी के पदभार ग्रहण करने के बाद मंदिर की व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से संचालित होंगी।
10: आज हमको भी अभी जानकारी मिली है कि हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ मिल गए हैं हमको, बहुत उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना। और देश की रक्षा और सुरक्षा करने के बाद अब सनातन धर्म के प्रेमियों को और विश्व में फैले हमारे राम भगवान की जो कीर्ति और यश है, ऐसे ट्रस्ट को संभालने के लिए उनको जिम्मेदारी मिली है। हमको पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे।
11: All right, Air Marshal Jitendra Mishra retired, who was appointed the first Chief Executive Officer of the Ayodhya Ram Temple, has told NDTV that he feels fortunate that he has been given this chance to serve the nation for 40 years and then directly at the Ram Temple. You know, when asked if he is looking forward to this challenge of negotiating a different terrain, he told us at NDTV, if this is the command of Lord Sri Ram, then I have no right to question it. Listen in to that exclusive conversation.
12: Yeah, so I heard about it from the television about an hour back.
13: So you heard about it from the television an hour back. Before that, you had no idea about it, sir?
12: No, not at all. Gee.
13: How do you feel about this, sir? It's a very, very different role from what you've been doing so far. You just retired from the Air Force. How do you feel about this new role?
12: I consider myself very fortunate that Prabhu Shri Ram has given me this opportunity to... Having given me an opportunity for 40 years to serve the nation, now I've got the opportunity to serve the Shri Ram Temple and the Shri Ram Bhats.
13: As someone who has spent so many decades as a combat aviator, you were a hero during Operation Sindhu. Tell us a little bit about what the warfighter in you is looking forward to in this new role, sir.
12: So, you know, the responsibilities of the CEO are... available in the open domain. I have seen them and I find myself capable of undertaking them. But along with that, I'd like to thank the search committee, the trust, and of course, for the blessings of for having found me adequate to take up this responsibility. So far as the plan for the future is concerned, I'm very sure under the guidance of the trust and along with my other teammates, I will try and do my best that is possible for the organization and administration of the temple.
13: You have spent your entire career, Air Marshal, in a very challenging environment. Are you looking forward to this new posting in the best traditions of another very challenging assignment for you, sir?
12: अगर ये प्रभु श्री राम की आज्ञा है तो इसमें मेरे looking forward या मानने ना मानने का कोई अधिकार नहीं बनता।
13: How is your family? How has your family received this news, sir?
12: They are exhilarated and we all consider ourselves fortunate to have got this opportunity.
13: So when do you begin your work, sir? What are the next steps before you take on this new role?
14: I presume I'll be speaking

0: बयान कि कश्मीरी पंडितों को जो धमकियां मिल रही हैं उसको उन्होंने स्टेटहुड से जोड़ा, राज्य के दर्जे से जोड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार की बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा कोई राजनीतिक सौदेबाजी का विषय नहीं है।
1: इट इज कन्वीनियंट टू होल्ड पीपल नॉट रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिट लिस्ट फॉर द किलिंग ऑफ कश्मीरी हिंदूज, बट डेयर यू नॉट स्पीक अ वर्ड अगेंस्ट ISI, द सोसाइटी दैट सपोर्ट्स जिहाद, the Pakistani government and the terror organization that have killed thousands of innocents in Kashmir. You find it convenient to blame the system, the Indian agencies, the Indian government, than to blame the real people behind the sinister designs in Kashmir, the people who have been responsible for the death of thousands of Kashmiris.
2: Pradeep Datta has been tracking the latest developments for us. He joins us live at the moment. Pradeep, the NC Patriarch also took a swipe at the center's peace claims, trained his guns directly at LG Manoj Sinha as well, with many now lashing out at Dr. Abdullah's comparison, calling it flawed and hurtful too.
3: Yes, many people feel that this is the same standard operation procedure that these leaders had been following in the past, because when in 90s Kashmiri Pandits were forced to abandon their hearts and home because of Pak-sponsored terrorism, that time they had blamed the then Governor Jagmohan for exodus of this community. But today they are trying to shift blame on LG Manoj Sinha and administration for coming out with threat letter to Kashmiri Pandit employees so that they can generate fear psychosis to stall the process of restoration of statehood. This is a very controversial statement. This has already triggered a political firestorm, and many Kashmiri Pandit organizations and BJP leaders, they are up in arms against Farooq Abdullah. They are calling the statement ridiculous, obnoxious and shocking. They are saying that how come Farooq Abdullah put blame on administration and gave clean chit to Pakistan and Pak proxies who are responsible for targeting of Kashmiri Hindus in the past also, and they had been doing it for the last 3 decades, and they are saying that this is nothing but a denial of a genocide of Kashmiri Pandit, discrediting pain of a displaced community, and third, what they are Farooq Abdullah is trying to do is giving clean chit to Pakistan and these terror organizations operating from across the border and within Jammu and Kashmir. So they are saying that how come you compare two things, because one is the threat to the Kashmiri Pandit community, and then you are trying to compare it with the DG, SSPs and DCs who are the part of the state administration and law enforcing agencies. They are properly protected. You can't compare the two things together, because Kashmiri Pandits want to return back home. Their land has already been encroached upon. There are elements who had raised a voice for Nizam-e-Mustafa. They do not want to see the footprints of Kashmiri Hindus and Kashmiri Pandits. So they are the one who are threatening them. So you can't compare two things together. They want them to apologize to the community who has already suffered a lot because of Pak-sponsored terrorism. Parmeshwar.
2: Pradeep, we'll of course continue to track all the latest updates with you as always. Thanks so much for joining us. All right, on that note, let's switch tracks now to the other crucial story we're tracking this morning. India's 7.8% GDP growth figure for the first quarter has quickly turned into a political and economic argument over what the numbers actually tell us about the economy. Commerce Minister Piyush Goyal says critics are comparing different GDP series and therefore drawing the wrong conclusions. So as you can tell, the government is standing firmly by the revised GDP series, while critics have questioned how the growth rate is being calculated, and in particular, what happens when different GDP series and price measures are used. The Congress mocked the government's 7.8% number with a froth jibe on X. The BJP responded with its own cup tea counterattack, while Kiran Rijiju accused the Congress of being in deep intoxication, and Piyush Goyal said that politicians do not manufacture GDP figures. This exchange of insults hasn't settled the economic question yet, as critics are highlighting many major questions. How strong is 7.8% growth when we examine what is driving it? What does it mean per capita? And what is happening to wages, to jobs, consumption, and household purchasing power? Listen in to the crucial reactions we've lined up for you.
4: सच्चाई छुप नहीं सकती। और
5: व्यवस्था जो ये तय करती है हर महीने क्या हुआ, हर तिमाही में क्या हुआ, वो व्यवस्था वर्षों वर्षों से वही चल रही है। कोई हम राजनीतिक लोग, मंत्री या एमपी या हम में से कोई आंकड़े नहीं बनाते। हम जाके एक एक इंडस्ट्री से, एक एक सेक्टर से डेटा लेके उसको कंपाइल नहीं करते। अब आप जब ऐसी नकारात्मक सोच सामने दृष्ट लेके आते हैं तो एक प्रकार से आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं। जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ।
6: जो लोग जीडीपी का, चाहे आपने नाम ले लिया कांग्रेस, कांग्रेस हो या जो लोग हों, या तो जीडीपी का ज्ञान नहीं है। 2014 से लेकर के कोरोना के काल से लेकर के खाड़ी युद्ध से ले जीडीपी को कभी गिरने नहीं दिया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व्यवस्था में, और देश आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर जा रहा। हाँ, कुछ लोगों का भारत का हित भी अच्छा नहीं लगता, उनके मुंह पर बढ़ते हुए जीडीपी एक तमाचा है।
7: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भी भारत जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें तमाम निराशावादी जो सदा सर्वदा भारत की अर्थव्यवस्था में नकारात्मकता ढूंढना चाहते हैं, भारत की सेना में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं, भारत की संस्कृति में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं, धर्म में निगेटिविटी ढूंढना चाहते हैं और हर वर्ग को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ऐसे विपक्षी नेताओं के अरमानों पर गाज गिरी है। जब भारत ने 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज की है, जो विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था।
8: देखिए कितना सही बोला प्रधानमंत्री जी ने। मैंने कल भी कहा था कि पिछले साल इस तरह से पूरे माहौल को भयभीत करने वाला वक्तव्य दिया था राहुल जी ने कि जैसे कि भारत का इकोनॉमी कोलैप्स करने जा रहा है, और आज जो है विश्व का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जब हो गया है तो अब जो लोग है आज हम देख रहे हैं कि इन लोग को ये स्वीकार नहीं हो रहा है। ये एक अनपच की स्थिति है बस, और इसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से कांग्रेस पार्टी जूझ रहा है और जूझ रहा है उसको।
9: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान, सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
10: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव थे कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और यह हालत तो ये, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
2: Alright, so the question for viewers is not simply whether 7.8% is a big number, it's what that number is measuring, how robust that calculation is, and whether the economy underneath the headline is as strong as the headline suggests. NDTV's managing editor Padmaja Joshi, she spoke to former chief economic advisor Krishnamurthy V. Subramaniam, who breaks down the 7.8% GDP growth figure and the methodology behind it. He used the analogy of khichdi to explain the methodology. Listen in.
11: The first and natural question, of course, and I want to ask you specifically, it's being argued that this data, these numbers are not trustworthy because in fact, this figure should not be 7.8%. It is closer to 2.6%. Some are even saying that the growth is zero. How do you respond to that?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you,

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्टियल मसाला।
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।
6: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
7: कुछ इससे भी अनोखा।
6: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
4: थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट। Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: the sinister designs in Kashmir, the people who have been responsible for the death of thousands of Kashmiris.
1: All right, let's turn our attention to the other big story we're tracking at the moment. The Ram Temple Trust has appointed a former senior Air Force officer, Air Vice Marshal Jitendra Mishra, as its first full-time CEO. He brings 31 years of military experience, and the former officer held several commanding positions as well in the Indian Air Force and was the chief of its Western Command during Operation Sindoor. And now Air Marshal Jitendra Mishra, retired, will oversee the Temple Trust's administration. This appointment, you must note, has triggered a political row. The Congress and other opposition parties, they are questioning why retired Air Marshal was chosen for temple administration, with some asking why a religious figure or a saint was not appointed. Meanwhile, AIMIM's Waris Pathan, his charge is that while new people are being brought in, those who were previously responsible must still face accountability. And the IUML is questioning the very choice of a retired Air Force officer for the post. But the BJP, however, has welcomed the move, saying the new CEO will bring greater transparency and better administration. This, as the opposition is essentially asking two questions. Is this a genuine institutional overhaul? And what happens to the allegations concerning the old system? Here are the crucial reactions you cannot ignore.
2: Purv Air Marshal Adani Jitendra Mishra ji, Prav Sri Ramlala Mandir ke naye CEO honge. मैं उनकी नियुक्ति पर उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रभु रामलला ने जिस ढंग से उन्हें आशीर्वाद दिया है, मैं कह सकता हूँ कि श्री जितेंद्र मिश्रा जी के पदभार ग्रहण करने के बाद मंदिर की व्यवस्थाएँ बेहतर ढंग से संचालित होंगी।
3: आज हमको भी अभी जानकारी मिली है कि हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ मिल गए हैं हमको। बहुत उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना। और देश की रक्षा और सुरक्षा करने के बाद अब सनातन धर्म के प्रेमियों को और विश्व में फैले हमारे राम भगवान की जो कीर्ति और यश है, ऐसे ट्रस्ट को संभालने के लिए उनको जिम्मेदारी मिली है। हमको पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे।
4: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है, ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी, उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है, उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था, कोई फर्क नहीं है।
5: देखिए, जो नए सीईओ का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, नए सीईओ चूंकि फौजी कमांडर थे, 40 साल तक उन्होंने फौज में खिदमत दी, उनको एक लंबा तजर्बा इस बात के लिए है। दूसरे वेस्टर्न कमांड भी उन्होंने संभाली है, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई है। सवाल वही है सबसे बड़ा कि उनका इम्तिहान जो फौज में था वो तो ख़त्म हो गया, अब राम मंदिर में आकर जो सीईओ बने हैं, तो यहाँ से एक नया इम्तिहान उनका शुरू होगा। और ये इम्तिहान में वो कितना कामयाब हो पाते हैं, ये देखने की बात होगी।
6: समाजवादी पार्टी पूर्व वायुसेना उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्र जी को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि सेना के जितेंद्र मिश्र जी को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाएगा, जो सुपर बॉस लोग हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे, और जो ट्रस्ट है वो उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने दे।
7: श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है एक फौजी को। मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे जितने हैं ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर हैं, वो सभी चोर हैं। तो फौजी और चोर के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। और इनकी चोरी अभी भी नहीं रुकेगी। हमारा मानना है कि वहां पूरे चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, भगवान राम के घर में डाका डालने वाले लोग हैं, फौजी को आगे करके ये अपना जो गंदगी है वो साफ करना चाहते हैं।
8: साथ वारिस पठान है, जिस तरीके से चीजें सामने आई, कमेटी बैठी है और आज जाकर सीईओ का, पहले सीईओ का अपॉइंटमेंट होता है और साथ ही साथ तीन ट्रस्टी भी अपॉइंट किए जाते हैं, ये जो डेवलपमेंट है कैसे देखते हैं?
9: देखिए, सबसे पहले तो हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र रच के शहीद कर दिया। उसके बाद एक भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उस भव्य राम मंदिर के अंदर आपने एक ट्रस्ट बनाया, अब ट्रस्ट में इतना बड़ा आपने घोटाला कर दिया। यकीन मानो, मेरे हिंदू दोस्त लोग मुझे फोन कर करके बोल रहे, वारिस भाई ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हमारी आस्था का कत्ल कर दिया है लोगों ने, करोड़ों का आपने घपला किया, 1200 करोड़ से भी ज्यादा का घपला दिख रहा है। एक SIT की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, वहां पर SIT अपॉइंट हुई थी, उस रिपोर्ट में दर्शाता है कि 70 से ऐसे उनके पास एविडेंस है जिसमें बता रहे किस तरह से चंदा लोग चोरी कर करके भाग रहे। और इतना ही नहीं, FIR किया आपने, 8-9 लोगों को उसके अंदर ये किया। चंपत कहाँ चले गए, उनका तो पता ठिकाना ही नहीं। आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे, लेकिन जो मेन थे वो तो भाग गए। अभी ठीक है, आपने अच्छा किया, CEO अपॉइंट किया, दूसरे लोगों को आपने अपॉइंट किया, लेकिन जो चोरी हुआ, जो चंदा हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ था वो आपने खा गए, जो प्रभु राम के नाम पे दिया गया था वो आपने खा गया, उसके बारे में क्या, उनको कब सजा मिलेगी, उन पर कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? तो ये जनता तो ये सवाल कर रही है ना, अपॉइंट करिए। जो उस टाइम पे ये हुआ, जिन लोगों ने इतना बड़ा घपला कर दिया, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना इनके बारे में, बीजेपी के बारे में, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे।
10: I heard some air marshal has been appointed over there. I mean, it's okay, but then it doesn't mean, you know, जो कुछ भी करोगे आप, उसका ये नहीं मतलब होता है कि पहला गुना माफ हो गया। चोरी की है भैया, तभी तो हमें एयर मार्शल बिठाना पड़ रहा है। अगर चोरी ना करते तो ये बिठाना पड़ता क्या?
11: A retired person coming in and holding a very important crucial position like a CEO of the Ram Mandir Trust and all raises questions, but that is a part of the issue. But the real issue over here is that what happened to the Chanda Chori? What happened to the Ram Temple donation theft? Millions of Ram devotees are hurt by what had happened over there. And this has been happening for the last 2-3 years regularly. Now, there is this man called Champat Rai. We all knew that Champat Rai was directly involved in this Ram Temple theft. But there is no investigation qua this Champat Rai. Was there an investigation into his bank accounts? Was there an investigation into how the money has been trailed from this account to that account? Nothing has been done by the government. Now, so therefore, to distract the Ram devotees from this Chanda Chori, now they have brought in a new CEO and a set of board members over there.
1: Well, Air Marshal Jitendra Mishra, retired, who was appointed the first chief executive officer of the Ayodhya Ram Temple, has told NDTV that he feels fortunate that he has been given the chance to serve the nation for 40 years and then directly at the Ram Temple. You know, asked if he is looking forward to the challenge of negotiating a different terrain, he told us at NDTV, "If this is the command of Lord Sri Ram, then I have no right to question it." Listen in to that exclusive conversation.
12: You heard about it from the television an hour back. Before that, you had no idea about it, sir?
13: No, not at all. Gee.
12: How do you feel about this, sir? It's a very, very different role from what you've been doing so far. You just retired from the Air Force. How do you feel about this new role?
13: I consider myself very fortunate that Prabhu Shri Ram has given me this opportunity to... Having given me an opportunity for 40 years to serve the nation, now I've got the opportunity to serve the Shri Ram Temple and the Shri Ram Bhats.
12: As someone who has spent so many decades as a combat aviator, you were a hero during operations. Tell us a little bit about what the warfighter in you is looking forward to in this new role, sir.
13: So, you know, the responsibilities of the CEO are available in the open domain. I have seen them and I find myself capable of undertaking them. But along with that, I'd like to thank the search committee, the trust, and of course, for the blessings of for having found me adequate to take up this responsibility. So far as the plan for the future is concerned, I'm very sure under the guidance of the trust and along with my other teammates, I will try and do my best that is possible for the organization and administration of the temple.
12: you spent your entire career, Marshall, in a very challenging environment. Are you looking for

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
8: अरे मेरे राजा।

0: and then benefiting the people of the region. I think being the representative of the country and the representative of the people, they should speak for the people who are affected because of Pak-sponsored terrorism rather than talking for the terrorists and batting for country that is involved in terror-related activity. I think this is a very controversial statement coming after Farooq Abdullah's remark yesterday where he tried to say that this was a conspiracy basically to stall statehood to Jammu and Kashmir, and now he is connecting this with election. I think this is more, nothing can be more shocking than this thing.
1: We'll, of course, continue to track all the political reactions that now come in with you, Pradeep. Thanks so much. But as Pradeep was just mentioning, a political row over threats to Kashmiri pandits is widening, with National Conference Chief Farooq Abdullah calling the threats a conspiracy to block Jammu and Kashmir's statehood. Dr. Abdullah questioned why Hindu police officers face no similar threats, while alleging that the Lieutenant Governor and the administration are behind them. The BJP has hit back, with Ravinder Raina saying pandit security cannot be linked to statehood or used for political bargaining. Pradeep Bhandari of the BJP has echoed the same sentiment. Meanwhile, Congress MP Imran Masood has also raised questions, claiming that threats and attacks surface during election times and asking who benefits from them. This is Terror Victims. Vikas Raina says pandits are being targeted because they want to return home and claim that those who have encroached on their land see their return as a threat. Here are the reactions you need to listen to.
2: यहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं रह रहे हैं, मुझे ये बताइए, यहाँ सब अफसर बाहर से हैं जो हिंदू हैं, आपके पुलिस के डीआईजी, डीजी, एसपी, डिस्ट्रिक्ट के एसपी हिंदू हैं, हैं, डीसी हिंदू हैं, उन्हें क्यों नहीं थ्रेट आ रही? जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारा पुलिस है, सारा यहाँ का मामला है, वो क्यों नहीं देता है जवाब इसका? उसे पूछिए ना कि कहाँ से आ रहा है, कौन थ्रेट दे रहा है। मैं तो उनसे आरोप लगाता हूँ, यही लोग थ्रेट दे रहे हैं और यही थ्रेट के जिम्मेदार हैं।
3: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान कि कश्मीरी पंडितों को जो धमकियां मिल रही हैं उसको उन्होंने स्टेटहुड से जोड़ा, राज्य के दर्जे से जोड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार की बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा कोई राजनीतिक सौदेबाजी का विषय नहीं है।
4: फारूक अब्दुल्ला का बयान एक सॉफ्ट सपोर्ट है आतंकवादियों को। फारूक अब्दुल्ला का बयान वही बयान है जैसा सोनिया गांधी ने दिया था बटला हाउस के समय, जब उनको आंसू आ गए थे बटला हाउस के आतंकवादियों के लिए एज पर सलमान खुर्शीद। फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार कभी हुआ ही नहीं था। इससे ज्यादा दर्दनाक बयान कोई हो नहीं सकता। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपने वोट बैंक के लिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय एनसी कर रही है, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, और यही वो सोच है जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैक करते हैं, जिसमें आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार पे चुप्पी या उसका मुखौल उड़ाया जाता है।
5: पहली बात तो थ्रेट इसलिए कश्मीरी पंडितों को मिलती है क्योंकि कश्मीरी पंडित वापस घर वहां पे जाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने उनके ज़मीनों पे हमारी जायदादों पे कब्जा किया है उनको वो ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी अगर हम वापस गए तो, उनके लिए तो हम थ्रेट ही है। सेकेंड एक टेररिस्ट, वो नहीं चाहते प्लूरलिज्म इन कश्मीर, सेकुलरिज्म इन कश्मीर, तो वो नहीं चाहते वो सब चीज़ें। वो सिर्फ बातें ये सब पॉलिटिशियन लेकर, जो कश्मीर के पॉलिटिशियन भी हैं और जहाँ कहीं के भी पॉलिटिशियन, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अपोज यही करेंगे कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाने का। तो फारूक अब्दुल्ला से मैं साफ कहना चाहता हूँ कि उनके बयान से हमको कोई अपेक्षा है नहीं।
6: इट इज कन्वीनियंट टू होल्ड पीपल नॉट रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिट लिस्ट फॉर द किलिंग ऑफ कश्मीरी हिंदूज, बट डेयर यू नॉट स्पीक अ वर्ड अगेंस्ट ISI, the society that supports jihad, the Pakistani government and the terror organization that have killed thousands of innocents in Kashmir. You find it convenient to blame the system, the Indian agencies, the Indian government

0: than to blame the real people behind the sinister designs in Kashmir, the people who have been responsible for the death of thousands of Kashmiris.
1: All right, moving on to the other crucial stories we're tracking. The Ram Temple Trust has appointed a former senior Air Force officer, Air Vice Marshal Jitendra Mishra, as its first full-time CEO. He brings 31 years of military experience. The former officer held several commanding positions in the Indian Air Force as well, and he was the chief of its Western Command during Operation Sindoor. And now he will oversee the Temple's Trust Administration. This appointment has triggered a political row too. Congress and other opposition parties are questioning why a retired Air Marshal was chosen for Temple Administration, with some also asking why a religious figure or a saint was not appointed. You must also note that AIMIM's Waris Pathan's charge is that while now people are being brought in, those who were previously responsible must still face accountability. And the IUML is questioning the very choice of a retired Air Force officer for this post. The BJP, on the other hand, has welcomed the move, saying the new CEO will bring greater transparency and better administration. This, as the opposition is essentially asking two questions. Is this a genuine institution overall? And what happens to the allegations concerning the old system? Here are the reactions you need to listen to.
2: Purv Air Marshal Adani Jitendra Mishra ji, Prabhu Sri Ramlala Mandir ke naye CEO honge. Main unki niyukti par उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रभु रामलला ने जिस ढंग से उन्हें आशीर्वाद दिया है, मैं कह सकता हूँ कि श्री जितेंद्र मिश्रा जी के पदभार ग्रहण करने के बाद मंदिर की व्यवस्थाएँ बेहतर ढंग से संचालित होंगी।
3: आज हमको भी अभी जानकारी मिली है कि हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ मिल गए हैं हमको, बहुत उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना। और देश की रक्षा और सुरक्षा करने के बाद अब सनातन धर्म के प्रेमियों को और विश्व में फैले हमारे राम भगवान की जो कीर्ति और यश है, ऐसे ट्रस्ट को संभालने के लिए उनको जिम्मेदारी मिली है। हमको पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे।
4: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है, ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी, उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है, उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था, कोई फर्क नहीं है।
5: देखिए, जो नए सीईओ का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, नए सीईओ चूंकि फौजी कमांडर थे, 40 साल तक उन्होंने फौज में खिदमत दी, उनको एक लंबा तजर्बा इस बात के लिए है। दूसरे वेस्टर्न कमांड भी उन्होंने संभाली है, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई है। सवाल वही है सबसे बड़ा कि उनका इम्तिहान जो फौज में था वो तो ख़त्म हो गया, अब राम मंदिर में आकर जो सीईओ बने हैं, तो यहाँ से एक नया इम्तिहान उनका शुरू होगा, और ये इम्तिहान में वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखने की बात होगी।
6: समाजवादी पार्टी पूर्व वायुसेना उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्र जी को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि सेना के जितेंद्र मिश्र जी को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाएगा, जो सुपर बॉस लोग हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे, और जो ट्रस्ट है वो उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने दे।
7: श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है एक फौजी को। मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे जितने हैं ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर हैं, वो सभी चोर हैं। तो फौजी और चोर के बीच

0: में सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है और इनकी चोरी अभी भी नहीं रुकेगी। हमारा मानना है कि वहां पूरे चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, भगवान राम के घर में डाका डालने वाले लोग हैं। फौजी को आगे करके ये अपना जो गंदगी है वो साफ करना चाहते हैं।
1: साथ वारिस पठान है, जिस तरीके से चीजें सामने आई, कमेटी बैठी है और आज जाकर सीईओ का, पहले सीईओ का अपॉइंटमेंट होता है और साथ ही साथ तीन ट्रस्टी भी अपॉइंट किए जाते हैं, ये जो डेवलपमेंट है कैसे देखते हैं?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र रच के शहीद कर दिया। उसके बाद एक भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उस भव्य राम मंदिर के अंदर आपने एक ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट में इतना बड़ा आपने घोटाला कर दिया, यकीन मानो मेरे हिंदू दोस्त लोग मुझे फोन कर करके बोल रहे, वारिस भाई ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हमारी आस्था का कत्ल कर दिया है लोगों ने, करोड़ों का आपने घपला किया, 1200 करोड़ से भी ज्यादा का घपला दिख रहा है। एक एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, वहां पर एसआईटी अपॉइंट हुई थी, उस रिपोर्ट में दर्शाता है कि 70 से ऐसे उनके पास एविडेंस है जिसमें बता रहे किस तरह से चंदा लोग चोरी कर करके भाग रहे। और इतना ही नहीं, एफआईआर किया आपने 8-9 लोगों को, उसके अंदर ये किया, चंपत कहाँ चले गए उनका तो पता ठिकाना ही नहीं, आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे लेकिन जो मेन थे वो तो भाग गए। अभी ठीक है, आपने अच्छा किया, सीईओ अपॉइंट किया, दूसरे लोगों को आपने अपॉइंट किया, लेकिन जो चोरी हुआ, जो चंदा हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ था वो आपने खा गए, जो प्रभु राम के नाम पे दिया गया था वो आपने खा गया, उसके बारे में क्या, उनको कब सजा मिलेगी, उन पर कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? तो ये जनता तो ये सवाल कर रही है ना, अपॉइंट करिए। लेकिन जो इस टाइम पे ये हुआ, जिन लोगों ने इतना बड़ा घपला कर दिया, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना इनके बारे में, बीजेपी के बारे में, देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे।
3: आई हर्ड सम एयर मार्शल हैज बीन अपॉइंटेड ओवर देयर, आई मीन इट्स ओके, बट देन इट डजंट मीन, यू नो, जो कुछ भी करोगे आप उसका ये नहीं मतलब होता है कि पहला गुना माफ हो गया। चोरी की है भैया तभी तो हमें एयर मार्शल बिठाना पड़ रहा है, अगर चोरी न करती तो ये बेटा ना पड़ता क्या?
4: A retired person coming in and holding a very important crucial position like a CEO of the Ram Mandir Trust and all raises questions, but that is a part of the issue. But the real issue over here is that what happened to the Chanda Chori? What happened to the Ram Temple donation theft? Millions of Ram devotees are hurt by what had happened over there. And this has been happening for the last 2-3 years regularly. Now, there is this man called Champat Rai. We all knew that Champat Rai was directly involved in this Ram Temple theft. But there is no investigation qua this Champat Rai. Was there an investigation into his bank accounts? Was there an investigation into how the money has been trailed from this account to that account? Nothing has been done by the government. Now, so therefore, to distract the Ram devotees from this Chanda Chori, now they have brought in a new CEO and a set of board members over there.
5: Well, Air Marshal Jitendra Mishra retired spoke to NDTV and said that he feels fortunate that he has been given the chance to serve the nation for 40 years and then directly at the Ram Temple. Asked if he is looking forward to the challenge of negotiating a different terrain, he told NDTV, and I quote, "If this is the command of Lord Sri Ram, then I have no right to question it." Listen into that exclusive conversation.
6: You heard about it from the television an hour back. Before that, you had no idea about it, sir?
7: No, not at all. Gee.
6: How do you feel about this, sir? It's a very, very different role from what you've been doing so far. You just retired from the Air Force. How do you feel about this new role?
7: I consider myself very fortunate that Prabhu Shri Ram has given me this opportunity to, having given me an opportunity for 40 years to serve the nation. Now I've got the opportunity to serve the Shri Ram Temple and the Shri Ram Bhats.
6: As someone who has spent so many decades as a combat aviator, you were a hero during operations in... Tell us a little bit about what the warfighter in you is looking forward to in this new role, sir.
7: So, you know, the responsibilities of the CEO are available in the open domain. I have seen them and I find myself capable of undertaking them. But along with that, I'd like to thank the search committee, the trust, and of course, for the blessings of for having found me adequate to take up this responsibility. So far as the plan for the future is concerned, I'm very sure under the guidance of the trust and along with my other teammates, I will try and do my best that is possible for the organization and administration of the temple.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: जयंत मिश्र जी को ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि सेना के जितेंद्र मिश्र जी को इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाएगा, जो सुपर बॉस लोग हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे और जो ट्रस्ट है वो उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने दे।
1: श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में इन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है एक फौजी को। मेरा अपना मानना है कि वहाँ पे जितने हैं ट्रस्ट के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सभी चोर हैं, तो फौजी और चोर के अंत के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है और इनकी चोरी अभी भी नहीं रुकेगी। हमारा मानना है कि वहाँ पूरे चोर हैं, ये चंदा चोर हैं, भगवान राम के घर में डाका डालने वाले लोग हैं। फौजी को आगे करके ये अपना जो गंदगी है वो साफ करना चाहते हैं।
2: वारिस पठान है, जिस तरीके से चीजें सामने आई, कमेटी बैठी है और आज जाकर सीईओ का, पहले सीईओ का अपॉइंटमेंट होता है और साथ ही साथ तीन ट्रस्टी भी अपॉइंट किए जाते हैं, ये जो डेवलपमेंट है कैसे देखते हैं?
3: देखिए, सबसे पहले तो हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र रच के शहीद कर दिया। उसके बाद एक भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उस भव्य राम मंदिर के अंदर आपने ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट में इतना बड़ा आपने घोटाला कर दिया और इतना ही नहीं, एफआईआर किया आपने 8-9 लोगों को उसके अंदर, ये किया। चंपत कहाँ चले गए? उनका तो पता ठिकाना ही नहीं। आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे, लेकिन जो मेन थे वो तो भाग गए। अभी ठीक है, आपने अच्छा किया, सीईओ अपॉइंट किया, दूसरे लोगों को आपने अपॉइंट किया, लेकिन जो चोरी हुआ, जो चंदा हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ था वो आपने खा गया, जो प्रभु राम के नाम पे दिया गया था वो आपने खा गया, उसके बारे में क्या?
4: I heard some air marshal has been appointed over there. I mean, it's okay, but then it doesn't mean, you know, जो कुछ भी करोगे आप उसका ये नहीं मतलब होता है कि पहला गुनाह माफ हो गया। चोरी की है भैया, तभी तो हमें एयर मार्शल बिठाना पड़ रहा है। अगर चोरी न करते तो ये बिठाना पड़ता क्या?
5: A retired person coming in and holding a very important crucial position like a CEO of the Ram Mandir Trust and all raises questions, but that is a part of the issue. But the real issue over here is that what happened to the Chanda Chori? What happened to the Ram temple donation theft? Millions of Ram devotees are hurt by what had happened over there. And this has been happening for the last 2-3 years regularly. Now, there is this man called Champat Rai. We all knew that Champat Rai was directly involved in this Ram temple theft. But there is no investigation qua this Champat Rai. Was there an investigation into his bank accounts? Was there an investigation into how the money has been trailed from this account to that account? Nothing has been done by the government. Now, so therefore, to distract the Ram devotees from this Chanda Chori, now they have brought in a new CEO and a set of board members over there.
6: A new chapter begins at the Ram Mandir Trust. Retired Air Marshal Mishra has been appointed as the new CEO. In his interview with NDTV, he calls it a chance to serve the nation and says it is Prabhu Shri Ram's order. Here is that exclusive conversation.
7: You heard about it from the television an hour back. Before that, you had no idea about it, sir?
8: No, not at all. Gee.
7: How do you feel about this, sir? It's a very, very different role from what you've been doing so far. You just retired from the Air Force. How do you feel about this new role?
8: I consider myself very fortunate that Prabhu Shri Ram has given me this opportunity to, having given me an opportunity for 40 years to serve the nation. Now I've got the opportunity to serve the Shri Ram temple and the Shri Ram Baths.
7: As someone who has spent so many decades as a combat aviator, you were a hero during operations in... Tell us a little bit about what the warfighter in you is looking forward to in this new role, sir.
8: So, you know, the responsibilities of the CEO are available in the open domain. I have seen them and I find myself capable of undertaking them. But along with that, I'd like to thank the search committee, the trust, and of course, for the blessings of for having found me adequate to take up this responsibility. So far as the plan for the future is concerned, I'm very sure under the guidance of the trust and along with my other teammates, I will try and do my best that is possible for the organization and administration of the temple.
7: You spent your entire career, Air Marshal, in a very challenging environment. Are you looking forward to this new posting in the best traditions of another very challenging assignment for you, sir?
8: अगर ये प्रभु श्री राम की आज्ञा है तो इसमें मेरे लुकिंग फॉरवर्ड या मानने ना मानने का कोई अधिकार नहीं बनता है।
7: How is your family received this news?

0: Moving on, a political row over threats to Kashmiri pandits is widening, with the National Conference chief Farooq Abdullah calling the threats a conspiracy to block JNK's statehood. Farooq has questioned why Hindu police officers face no similar threats while alleging the LG and administration are behind them. The BJP has hit back, with Ravinder Raina saying pandit security cannot be linked to statehood or used for political bargaining. Congress MP Imran Masood has also raised questions, claiming threats and attacks surfaced during election times and asking who benefits from them. Meanwhile, terror victim Vikas Raina says pandits are being targeted because they want to return home, and claimed those who have encroached on their land see their return as a threat. We have statements and reactions. Take a look.
1: Here, Kashmiri pandits are not living. Tell me this. Here, all the officers outside are Hindu. Your police DIG, DG, SP, district के SP हिंदू हैं, हैं? DC हिंदू हैं, उन्हें क्यों नहीं threat आ रही? जिस lieutenant governor के पास सारा पुलिस है, सारा यहाँ का मामला है, वो क्यों नहीं देता जवाब इसका? उसे पूछिए ना, ये कहाँ से आ रहा है? कौन threat दे रहा है? मैं तो उनसे आरोप लगाता हूँ, यही लोग threat दे रहे हैं। और यही थ्रेट के जिम्मेदार है।
2: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का यह बयान कि कश्मीरी पंडितों को जो धमकियां मिल रही हैं, उसको उन्होंने स्टेटहुड से जोड़ा, राज्य के दर्जे से जोड़ा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार की बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा कोई राजनीतिक सौदेबाजी का विषय नहीं है।
3: चुनाव आ रहे हैं, कोई हमला भी हो सकता है, क्योंकि सारे आतंकवादी हमले, सारी चीजें, धमकी हैं, ये सब नफरत की चीजें हैं, ये सब चुनाव के टाइम पे शुरू हो जाती हैं, हो रही हैं चुनाव के टाइम पर। और किसका किसको इनका फायदा होता है? जिसको फायदा होता है वो इसके पीछे जिम्मेदार है।
4: अब ये मूर्खतापूर्ण, एक तरीके से कहा जाए, वक्तव्यों का कोई उत्तर नहीं होता। उनको कैसे पता चल गया कि अभी आतंकी अटैक होने वाला है? ये कांग्रेस के पास से कहां से ये न्यूज़ आ जाती है? अगर न्यूज़ आती है तो उसका आधार क्या है? अगर आपके कहने के बाद अटैक होता है तो निश्चित रूप में आपकी उस वाणी के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ से पता चलता है। इस प्रकार की आशंकाओं को पैदा करके आप डर क्यों पैदा करना चाहते हैं? अगर कोई चीज़ सत्य है और कोई कह रहा है तो उसको आप झूठा क्यों साबित करना चाहते हैं?
5: फारूक अब्दुल्ला का बयान वही बयान है जैसा सोनिया गांधी ने दिया था बाटला हाउस के समय, जब उनको आंसू आ गए थे बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए, एज पर सलमान खुर्शीद। फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार कभी हुआ ही नहीं था। इससे ज्यादा दर्दनाक बयान कोई हो नहीं सकता। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपने वोट बैंक के लिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय एनसी कर रही है, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, और यही वो सोच है जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैक करते हैं, जिसमें आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार पे चुप्पी या उसका मुखौल उड़ाया जाता है।
6: पहली बात तो थ्रेट इसलिए कश्मीरी पंडितों को मिलती है क्योंकि कश्मीरी पंडित वापस घर वहाँ पे जाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने उनके ज़मीनों पे, हमारी ज़मीनों पे, हमारी जायदादों पे कब्जा किया है, उनको वो ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी अगर हम वापस गए तो। उनके लिए तो हम थ्रेट ही है। सेकेंड है टेररिस्ट, वो नहीं चाहते प्लूरलिज्म इन कश्मीर, सेकुलरिज्म इन कश्मीर, तो वो नहीं चाहते वो सब चीज़ें। वो सिर्फ बातें, ये सब पॉलिटिशियन लेकर, जो कश्मीर के पॉलिटिशियन भी हैं और जहाँ कहीं के भी पॉलिटिशियन, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अपोज यही करेंगे कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाने का। तो फारूक अब्दुल्ला से मैं साफ कहना चाहता हूँ कि उनके बयान से हमको कोई अपेक्षा है नहीं।
7: इट इज़ कन्वीनियंट टू होल्ड people not responsible for the hit list for the killing of Kashmiri Hindus, but dare you not speak a word against ISI,

0: Minister Vijay assuming that top post in Tamil Nadu.
1: Outwardly, certainly, it is leading to discomfort with Congress ministers openly saying that their continuation will be untenable because TVK and Congress are allies, and Congress is pitching Rahul Gandhi as the PM face, and here is another challenger emerging from within their alliance. But inwardly, we do not know whether they have settled that this is only for public consumption. There is no such chaos or confusion in real terms, because one TVK minister has ruled out such confusion between Congress and the TVK. So we'll have to wait and watch whether it's a strategic thing to keep the BJP quiet, and internally whether they have settled everything that Vijay accepting Rahul Gandhi's candidature, or is Vijay quietly trying to push himself as a potential PM face now that if they believe that they have enough numbers in terms of securing a majority even without the Congress, because already at one point in time you had the rebel AIADMK MLAs willing to support the TVK. At the moment, yes, they require the Congress's support for the majority, but if the TVK is very clear about pushing Vijay to the national scenario for as a prime ministerial face, then there will be a situation at some point the ties would be severed.
0: Yeah.
1: And for that, what's the plan B? Perhaps if the TVK is confident of getting support from AIADMK, then they may not be worried about that. But
0: right,
1: at the moment,
0: you know,
1: it is causing friction, at least outwardly.
0: And that's exactly what the Bharatiya Janata Party is also asking, that has TVK perhaps rejected Congress's Rahul Gandhi's leadership? We'll be tracking all that's coming out of Tamil Nadu very closely with you. But for now, shifting our focus to another story that matters on the show. A political row over threats to Kashmiri Pandit is widening, with National Conference Chief Farooq Abdullah calling the threats a conspiracy to block Jammu and Kashmir statehood. Farooq has now questioned why Hindu police officers face no similar threats, while alleging that the LG and the administration are behind them. The BJP has hit back, with Ravindra Raina saying that Pandit's security cannot be linked to statehood or used for political bargaining. Congress MP Imran Masood has also raised questions, claiming threats and attacks that surface during election times and asking who benefits from them. Meanwhile, terror victim Vikas Raina says that pundits are being targeted because they want to return home, and claimed those who have encroached on their land see their return as a threat.
2: Here Kashmiri pundits are not living here. Tell me this. यहाँ सब अफसर बाहर से हैं जो हिंदू हैं, आपके पुलिस के डीआईजी, डीजी, एसपी, डिस्ट्रिक्ट के एसपी हिंदू हैं, हैं डीसी हिंदू हैं, उन्हें क्यों नहीं थ्रेट आ रही? जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारा पुलिस है, सारा यहाँ का मामला है, वो क्यों नहीं देता जवाब इसका? उसे पूछिए ना कि कहाँ से आ रहा है, कौन थ्रेट दे रहा है। मैं तो उनसे आरोप लगाता हूं, यही लोग थ्रेट दे रहे हैं और यही थ्रेट के जिम्मेवार
3: हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान कि कश्मीरी पंडितों को जो धमकियां मिल रही हैं उसको उन्होंने स्टेटहुड से जोड़ा, राज्य के दर्जे से जोड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से इस प्रकार की बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा कोई राजनीतिक सौदेबाजी का विषय नहीं है।
4: चुनाव आ रहे हैं, कोई हमला भी हो सकता है, क्योंकि सारे आतंकवादी हमले, सारी चीजें, धमकियां, ये सब नफरत की चीजें हैं, ये सब चुनाव के टाइम पे शुरू हो जाती हैं, हो रही हैं चुनाव के टाइम पर। और किसका किसको इनका फायदा होता है? जिसको फायदा होता है वो इसके पीछे जिम्मेदार है।
5: अब ये मूर्खतापूर्ण एक तरीके से कहा जाए वक्तव्यों का कोई उत्तर नहीं होता। उनको कैसे पता चल गया कि अभी आतंकी अटैक होने वाला है? ये कांग्रेस के पास से कहां से ये न्यूज आ जाती है? अगर न्यूज आती है तो उसका आधार क्या है? अगर आपके कहने के बाद

0: अटैक होता है तो निश्चित रूप में आपकी उस वाणी के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ से पता चलता है। इस प्रकार की आशंकाओं को पैदा करके आप डर क्यों पैदा करना चाहते हैं? अगर कोई चीज़ सत्य है और कोई कह रहा है तो उसको आप झूठा क्यों साबित करना चाहते हैं?
1: फारूक अब्दुल्ला का बयान एक सॉफ्ट सपोर्ट है आतंकवादियों को। फारूक अब्दुल्ला का बयान वही बयान है जैसा सोनिया गांधी ने दिया था बाटला हाउस के समय, जब उनको आंसू आ गए थे बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए एज पर सलमान खुर्शीद। फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार कभी हुआ ही नहीं था। इससे ज्यादा दर्दनाक बयान कोई हो नहीं सकता। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपने वोट बैंक के लिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय एनसी कर रही है, फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, और यही वो सोच है जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैक करते हैं, जिसमें आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार पे चुप्पी या उसका मुखौल उड़ाया जाता है।
2: पहली बात तो थ्रेट इसलिए कश्मीरी पंडितों को मिलती है क्योंकि कश्मीरी पंडित वापस घर वहां पे जाना चाहते हैं, और जिन लोगों ने उनके ज़मीनों पे, हमारी ज़मीनों पे, हमारी जायदादों पे कब्जा किया है, उनको वो ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी अगर हम वापस गए तो। उनके लिए तो हम थ्रेट ही है। सेकेंड है टेररिस्ट, वो नहीं चाहते प्लूरलिज्म इन कश्मीर, सेकुलरिज्म इन कश्मीर, तो वो नहीं चाहते वो सब चीज़ें। वो सिर्फ बातें, ये सब पॉलिटिशियन लेकर जो कश्मीर के पॉलिटिशियन भी हैं और जहाँ कहीं के भी पॉलिटिशियन सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अपोज यही करेंगे कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाने का। तो फारूक अब्दुल्ला से मैं साफ कहना चाहता हूँ कि उनके बयान से हमको कोई अपेक्षा है नहीं।
3: Shifting our focus to other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Top economists have now rejected the 2.6% growth claims by cynics of the data, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This has not deterred political criticism. Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. Within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. Taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism.
4: Both of whom could not complete their time in India or in the government. And for the right reasons, many of you, if you look back, will remember all that the country was going through in the 2012-13-14 period. But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
5: Jo log GDP ka chahe apne naam le liya Congress, Congress ho या जो लोग हों, या तो जीडीपी का ज्ञान नहीं है। 2014 से लेकर के कोरोना के काल से लेकर के खाड़ी युद्ध से ले जीडीपी को कभी गिरने नहीं दिया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल व्यवस्था में, और देश आज होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर जा रहा। हाँ, कुछ लोगों का भारत का हित भी अच्छा नहीं लगता, उनके मुंह पर बढ़ते हुए जीडीपी एक तमाचा है।
6: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए ये सामान, सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही है जो आप बता रहे हैं।
7: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और ये हालत तो ये, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
3: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Jensen Huang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Listen in to what he said.
8: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. And I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
3: And well, politics has erupted after appointment of Air Marshal Jitendra Mishra retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the Indian Air Force, also served during Operation Sindoor. He has expressed gratitude for the new opportunity. Congress has now raised questions over the appointment and said, and I'm quoting here, "I wonder if there are some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here." The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed. Take a listen to all the reactions, the politics which has broken out over the new Ram Mandir CEO.
9: "And I consider myself the most fortunate person today to have been given this responsibility twice in my life. Ek bar rashtra seva ke liye aur abhi Shri Ram ke mandir ki aur Shri Ram bhakton ke liye mandir ke organization aur administration ke liye."
10: Retired army एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
11: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा, और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता, मीन्स द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी, दोनों बढ़ेगी।
12: ये फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, SIT ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी, SIT के बाद FIR दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर, श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने। तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: the rape case, and BJP's Pradeep Bhandari has more on this. Take a look.
1: Number one, ये prove कर रहा है कि जो मुख्यमंत्री के middleman मुख्यमंत्री को खुद को involve कर रहा है. अब audio number two आप सुनिए, जिसमें amount की चर्चा हो रही है.
2: अपने बंदे
1: ये बोल रहा है मिडिलमैन. सो पहले मिडिलमैन ने बोला, सीएम और सीएम की वाइफ ने इस ऐसे ऑफ द कफ कभी चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं ले सकता. सेकंड में वो कह रहा है भाई अमाउंट भी फिक्स हो चुका है और मैं बार बार अमाउंट के ऊपर कॉन्वर्जेशन नहीं करूंगा. अब आप तीसरा ऑडियो सुनिए. ऑफर फिक्स हो चुका है, पैसे कई लोगों को जाने हैं. सो आप क्रोनोलॉजिकली समझिए, पहले मिडिलमैन बात करता है, ये एक्यूज गुरविंदर चहल बोलता है कि भाई मैंने केस जो है मेरे को अब रेप पीड़ित मैं रेप एक्यूज्ड हूं, मुझे अपना केस निपटाना है. तो ये मिडिलमैन के टच में आता है. मिडिलमैन बोलता है कि भाई मुख्यमंत्री साहब से बात हो गई है, मुख्यमंत्री के ऑफिस से बात हो गई है, अब अमाउंट है पीछे मत ट्रैक करना. तो बोलता है मैं पीछे ट्रैक नहीं करूंगा. फिर दूसरे ऑडियो में बात होती है कि भाई अमाउंट अब फिक्स हो चुका है, सो देयर इज एन अमाउंट व्हिच इज बीइंग फिक्स्ड. और तीसरे में वो कह रहा है कि भाई अमाउंट को बाकी लोगों के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, विच पॉइंट्स टुवर्ड्स थ्री थिंग्स. कि क्या मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी एक सिंडिकेट चला रहे हैं जिसमें रेप के केसेस को ये वापस लेने के लिए रिश्वत और पैसा ले रहे हैं? क्या चार्ज नंबर टू ये है कि क्या चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एक सिंडिकेट ऑफ करप्शन बन चुका है? क्या आम आदमी पार्टी का लूट का मॉडल अब पंजाब में ये हो चुका है कि रेप के केसेस के लिए पैसा लेंगे, जैसे दिल्ली में शीश महल का करप्शन का लूट का था? और तीसरा, ये एक सिंडिकेट है, ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, इसीलिए बाकी शख्स की भी बात हो रही है. अब आप बात करते हैं.
0: And well, this is perhaps a major political controversy that's erupted in Punjab. Allegations that Gurpreet Kaur, the wife of the Punjab chief minister, demanded rupees 5 crore bribe to suppress a rape case. And that's exactly what Pradeep Bhandari is questioning. We'll be tracking that and lots more stories that matter here on NDTV. But for now, slipping into a very short break. Come right back. Lots more lined up for you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: Across the country,
4: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul. Covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाह मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV network.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
1: Three decades of watching the world change.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी।

0: orphan for that matter, and they were staying in an old age home. They have been rescued and brought here. Seven of them lost their lives, so it was a two-floor building. So all those who were actually residing on the first floor, they were saved. But those who were on the ground floor on that particular moment, they all lost their life, and many of them are injured. They are going through the physical trauma, the mental trauma, I would say. And so this organization is kind of taking care of them, and they would be parked here till the situation gets back to normal. सर क्या हुआ था उस दिन आप बताइए आप बता रहे थे
1: उस दिन में क्या हो गया थी बस अब खाना खाने का टाइम होने लग गया था और घर तो बस आया बोल रहा है कि आया कि आया देखा ही नहीं पर्ची देखने के टाइम में पेट हिल रहा है ना रुक हिल रहा है देखने तो वहाँ आ गया जी वहाँ से भागने को तो बस ऊपर भाग गया जी पहाड़ पट्टी
0: वहाँ पे कुछ लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर थे उनकी डेथ भी हो गई कुछ लोग बह भी गए
1: जी
0: कितने लोग
1: वो हो गया कम से कम 6-7 आदमी तो वहीं मर गया
2: इन लोगों को पूरा बाढ़ से हमने वहाँ की टीम ने रेस्क्यू करके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में लाकर वहाँ एक बार बेसिक ट्रीटमेंट शुरू किया और उसके बाद हम फिर काठमांडू लाकर वहाँ उन लोग ये माँ बाप को ये टेम्पररी शेल्टर में अभी हम वहाँ को सब खाने बसने प्रबंधन नर्सिंग केयर और बाकी सब लैब टेस्ट वगैरह सब हो रहा है अब सभी का हेल्थ स्टेबल भी है She took that courage to keep her head beyond that flood. So that
3: she literally
2: yeah, she tried she pulled that window and she tried to maintain that her head will be below
3: above the water level.
2: So above the water level so she was been able to save her life and after 2 hours the local volunteers they came and they rescued her she was fully in flood fully with mud and water so and then she was taken to this Ayurvedic hospital she also was under the water and the local volunteers tried and she is 91 years old actually
0: 91
2: yes and but now she looks very calm
4: but Nepal's flood nightmare doesn't end with just the rescues now there are mountains of debris which pose a fresh challenge for people there looking to normalize the situation take a look at this ground report by Ranveer
5: Nepal flood left 2.2 million debris in the riverbanks of the affected areas. And this is an estimate done by United Nations Development Programme. It means UNDP. UNDP, through a satellite imaging system, estimated that around 2.2 million debris is being gathered here near the Bhotekoshi, Trishuli and Narayani River. And in the coming days, it will be a challenge for Nepal government to shift all this debris to some other places. I'll show you the footages. I am in Galchi and you can see the remains of a temporary house. Some of the trucks, they are still trapped in the debris. Some of the permanently constructed houses, trees and so many things. These all things are buried. And a number of dead bodies are also here in the debris near the riverbank of Bhotekoshi, Trishuli and Narayani River. So a big challenge in the coming days is to remove this debris because where this will be dumped. This is the biggest question that a danger of infection to the people who are residing here is still emerging and now you will see some of the mountains where people do farming their lives so it is impossible to shift this debris to those places where people are living and also it cannot be dumped to the river so that because the river is flowing in its own manner and if all this debris will be dumped to river that will create another biological challenge so Nepal government is facing a big challenge to remove this debris but where to dump it this is the biggest question and United Nations Development Program estimates that 2.2 million tons debris is here near the river banks of Bhotekoshi Trishuli and Narayani rivers
4: All right, the aftermath of the Nepal floods there. Let's now focus on flooding here in India, and the monsoon flood threat is growing across parts of the north. In Varanasi, the Ganga level has crossed the danger mark, while in Prayagraj, the Ganga and Yamuna continue to stay high, keeping the flood threat alive in low-lying areas. Prime Minister Modi has taken stock of the flood situation in Varanasi. He spoke to the mayor and collector of the city. Also, the Prime Minister was briefed on flood relief measures. Meanwhile, UP Chief Minister Yogi Adityanath has taken an aerial survey of the flooded areas and also met with the flood-affected families. Now let's shift focus to Uttarakhand. In Uttarakhand's Rudraprayag, heavy rain led to a rock face breaking away and sending debris and boulders down the slope. In Bihar, flooding and river erosion are displacing families, with the Gandak River triggering erosion in Bettiya, while Ganga and Kosi are overflowing in Bhagalpur. Take a look.
3: ये भैया तीन चार दिन हो गया, ये जलस्तर इसका लगातार बढ़ ही रहा है और अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो फिर खतरा भी हो सकता है। अरे खतरे के निशान से भी 15-15 फीट होगा, 15 फीट अगर बढ़ेगा तो फिर यहाँ समझ लीजिए बाढ़ आ सकता है।
6: यहाँ पर गंडक नदी जो है ये कटाव कर रही है 2 माह से, और यहाँ 2 माह पहले जो है ठोकर का निर्माण हुआ था, वो बल्ली को का निर्माण हुआ था और जियोटेक बेग का निर्माण हुआ था यहाँ पे, जिसके चलते अगर ठोकर बनाया उसके बाद यहाँ पर अगर 3-4 फीट ऊंचे हाइट में अगर बांध का निर्माण हो गया होता तो यह पानी जो है नदी के गंडक में रह जाता, पानी साइड से नहीं बहता तो गाँव जो खतरे से बच जाता।
7: मैं इस वक्त बनारस के मणिकर्णिका घाट पर हूँ, जो कि एक यहाँ के बारे में किंवदंती है कि कभी भी जो चिता है यहाँ पर जलती हुई वो शांत नहीं होती है। लेकिन ये भी आप देखिए कि बाढ़ के वजह से लोगों को खासी यहाँ पर परेशानी हो रही है। ये बनारस की गंगा नदी है जो कि फ़िलहाल काफ़ी जलस्तर बढ़ने से कई सारे इलाकों में, निचले जो इलाके हैं वाराणसी के, वो उसमें पानी भर गया है। और ना सिर्फ गंगा नदी बल्कि जो वरुणा नदी बहती है उसमें भी पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। कई सारे जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूब गए हैं। अब ये आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मणिकर्णिका जो घाट है वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए रोज़ाना सैकड़ों जो चिताएं हैं वो लोग लेकर आते हैं, और आप देखिए कि नाव के ज़रिए अब यहाँ से लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे हैं। बनारस के अगर पूरे घाट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर घाट इस वक्त डूब चुके हैं, और वहाँ पर नाव के ज़रिए अब यहाँ पर आप देखिए कि आवागमन हो रहा है। ये अगर आप देखिए, नाव ना हो तो आप देखिए कि कई सारे जो मकान हैं उनमें आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है, और नाव के ज़रिए
8: 100 रुपया ले रहे हैं, 100 रुपया ले रहे हैं नाव वाले, हर आदमी पीछे मुर्दा, हाँ मुर्दा वाले से भी ले रहे हैं।
7: ये आप देखिए कि ये पूरी जो गली है यहाँ पर अफरा तफरी भरा माहौल है। पूरी जो गली है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लकड़ी जो अंतिम संस्कार के लिए प्रयोग की जाती है वो भी लोग लेकर आ रहे हैं, पूरा कमर तक पानी में डूब के। नाव यहाँ पर एक आने जाने का जरिया बनी हुई है।
4: All right, with that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side, a controversy after the Keralam Chief Minister's social media post is deleted. We'll get to the details.

0: ஒன்பது பேர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க. இந்த ஆட்சி அமைச்ச 116 நாட்கள்ல 10 ஆணவ கொலை நடந்திருக்கு. அதுல ஒண்ணுக்கு கூட முதலமைச்சர்கள் வாய் திறக்கல.
1: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, உறுப்பினர் கேட்கிற மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் கேட்கிற எல்லா கேள்விக்கும் அதுக்கான தெளிவான விளக்கத்தை நான் மண்டே வந்து நான் பேசுகிறேன். நான் இங்கே இல்லைனா கூட யார் யார் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்றது எனக்கு வந்துடும். எல்லாத்துக்கும் நான் தெளிவான பதில் சொல்கிறேன். உங்கள் சார்பாக அவங்கக்கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் ஒன்று கேட்குறேன். யாரும் எந்திரிச்சு ஓடிடக்கூடாது.
2: All right, let's shift focus now. The Shuddhikaran Rao is back. This is after Congress President Mallikarjun Kharge has spoken out and hit out about it once again. In fact, he's pointed out Mallikarjun Kharge, he's in fact written to Rajya Sabha Leader of the House, J.P. Nadda, questioning why no FIR has been registered even 24 days after an assurance of action. Remember, there was this Shuddhikaran that took place in Uttarakhand after a rally held by Mallikarjun Kharge there. Kharge says that Rahul Gandhi in fact has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but the Congress will not be intimidated. The BJP has hit back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted the purification ceremony had no links to the BJP, also claiming that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program and therefore the Shuddhikaran was carried out. Baghel also alleges that beer bottles were found at that same venue. This was a ground, remember, where the rally took place, while stressing also that those who performed the Havan belonged to the Dalit community.
3: काश नड्डा जी को एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
4: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और ये पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बोतलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
2: Well, let's now focus on the situation in Nepal. It's been over a week since the devastating flash floods took place. The number of dead is now over 1,200 and thousands still remain missing. Now, there are many families waiting for some news of their loved ones. Hope, of course, is fading, but even the mortal remains is something that families are desperate so that they can perform the final rites. So photos of missing loved ones line hospital walls there in Nepal. And as the search for the missing continues, families are holding on to hope. DNA samples are being collected, while temporary burials are also being used until identities can be confirmed. In fact, also some families performing last rites using effigies. The scale of the tragedy is staggering. More than 1,200 people are dead. Over 4,000 remain unaccounted for. Hundreds injured. 12,000 people, though, were rescued during the operations as thousands of security personnel continue the relief and search operations. NDTV's Vishnu reporting from Galchi. This is 84 kilometers south of the Rasuwagadi border with China. And this is where the sheer volume and force of the deluge has left a trail of destruction. It's just hours away from the epicenter. And raging floodwaters swept through this area, washing out concrete bridges, destroying homes, knocking out major power substation here. NDTV's Vishnu Shom with this report.
5: Perhaps the toughest part of covering war or natural disasters is coming across accounts of what little children

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
8: अरे मेरे राजा।

0: गोलियां चलवाई जा रही है वीडियोस में,
1: इसीलिए विवेक शास्त्री कर रहे हैं।
0: नहीं, दिमागी नक्सल पहले क्या होता है? दिमागी नक्सल किसको चलाने बोली?
1: अरे सर अभी तो पूछा था हिडमा वाला, वही दिमागी नक्सल।
0: नो नो नो, ये
1: वही दिमागी नक्सल। आतंकवादियों को जो आतंकवादी नहीं कह सकता वो दिमागी नक्सल।
0: एक मिनट
1: बोलो, नक्सल दिमागी नक्सल।
2: You know, the fact is that you might think that these memes are not setting the narrative, but look at the way in which the phrase Dimagi Naksal is now commonplace. People yes, are using yes. the phrase of Dimagi Naksal, and that is what narrative building is, right?
0: And to victimize the voice of dissent.
1: पद्मजा प्रधान
0: सरकार के खिलाफ है तो ये दिमागी नक्सल है।
1: प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये टर्म दिया और इसलिए वो नैरेटिव बना। yes. किसी मीम की वजह से, किसी सोशल मीडिया कैंपेन की वजह से नहीं बना।
0: उस शब्द को उठा करके हम
1: कहा हथियारी नक्सल समाप्त हुए, दिमागी नक्सल को समाप्त करना है, नैरेटिव बना, ये बनता ही।
2: तो अब दूसरी तरफ से दूसरा नैरेटिव बनेगा, कांग्रेस अपना नैरेटिव लेकर आएगी, शिवसेना अपना नैरेटिव लेकर।
3: रियली सॉरी टू इंटरप्ट, बट व्हाट आनंद सर एंड हर्षवर्धन सर सेड दैट यू नो it has happened in the past as well with Congress and everything, but I'm really sorry what Anish sir said that you know it is happening because in today he got a call and everything. It was just an example to tell maybe the post or maybe the video was satire or something, but it does affects the youth, because considering there are so many people, or let's say the youth of the country, there will be 50% of people who will take it something very seriously and people who will not take it seriously. So saying that it was not a narrative but it got intended like that is something very baseless to say coming from a political party.
2: You're saying that the youth, impressionable youth, is taking away ideas from such videos.
3: Right, because they do and they implement, and that is why
0: violence बढ़ा रहे हो,
4: गुंडागिरी,
0: आप गुंडागर्दी बढ़ा रहे हो,
2: डॉक्टर रंगनाथन,
3: and again we going back to the past. I'm really sorry. That's where as a country, I guess we fall back, that every time we have to support something, we go to the past that this happened in the past.
2: Don't keep looking over your shoulder. Yes, Dr. Ranganathan, go.
5: First of all, let's get one thing clear. We are not going to the past.
0: You are.
5: As I said, the current non-BJP governments are trampling freedom of speech as much as the current BJP government. So please get your facts right. Learn what is happening on freedom of speech in Punjab, in Tamil Nadu, in all the non-BJP or Congress rule states, where the sitting chief minister of Telangana says he will strip journalists in public. Is that the past? No. Hmm. He is still the sitting chief minister
0: of Telangana. Why don't you talk of Hemant Biswa Sharma?
5: No, please.
0: Hemant Biswa Sharma pe bolo na. वॉशिंग मशीन पे बोलो ना, अब वो बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, धोबी घाट बन गया है। सारे गलत काम करो, आओ ले लेंगे, बोलिए ना। व्हाई नॉट, प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का है?
5: अरे भाई, कौन सी पार्टी है?
0: एजुकेशन मिनिस्टर किस पार्टी का था?
5: अरे सुन लो यार, अभी
2: यू टॉकिंग अबाउट हेमंत बिश्व शर्मा बिकॉज ऑफ द वीडियो बिफोर द इलेक्शंस वेयर ही वाज सीन टेकिंग द वे
0: ही स्पीक्स, द काइंड ऑफ कमेंट्स ही डज, व्हाई डजंट नॉन स्पीक अप अगेंस्ट?
2: ओके, वी हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। यस, फिनिश योर पॉइंट डॉक्टर रंगनाथन।
5: एज आई सेड, आई एम अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। आई हैव कंडेमड एवरी गवर्नमेंट कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस हु हैव एवर ट्रैम्पल्ड ऑन फ्री स्पीच एंड कंटिन्यू टू। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज, one gentleman was absolutely right. Satire has to be taken in that spirit. You can't say that it is a call for violence, because I will ask the same question. Was the famous slogan of 20 years ago, Tilak Tarazu aur Talwar Inko Maro Joote Char, was that not a call for violence? Yes or no? Vivek Srivastava?
0: आप जो हैं, आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप यहाँ पे आज के 2026 में बीजेपी के कुकर्मों को डाइल्यूट करने के लिए बैठते हैं।
2: ओके, सो इफ वी आर, आई थिंक देयर इज अ लार्ज कंसेंसस ओवर हियर दैट परहैप्स स्टे अवे फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ इमेजरी इन दीज मीम्स, बट लेट्स नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द मीम्स अबाउट द जीडीपी डिबेट। नाउ लुक, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस डिबेट, अ लॉट ऑफ पीपल वुड गेट वेरी कंफ्यूज, बट वॉट वॉज द काइंड ऑफ मैसेजिंग दैट वी सॉ कमिंग फ्रॉम द बीजेपी एंड द कांग्रेस? एंड लेट्स क्विकली गेट दैट अप। यू गॉट दिस which was put up by the Congress, where they showed a beer mug and they basically said that the actual beer was the Indian economy and the GDP figures were basically all froth. It was all fluff. Then the BJP came back and said ki bhai tum logon ko to sirf beer samajh mein aati hai, hum log chai ki baat kar rahe hain, and the GDP actually is 7.8% in the Modi era, and you had a Dimagi Naksal Congress. The Congress had a comeback to this as well, where they then made a chai edition on Bhakt's request, where they said ki bhai chai bahut kam thi, upar se jhag jhag tha. What did you guys make of this back and forth? Chalo, yahan pe koi goli woli nahi chal rahi hai. You thought this was clever? You think that the point came across?
1: Chai mein jhag hoti hai.
2: कुड बी कोल्ड कॉफी हो सकता है ये.
1: चाय में तो कभी जाग नहीं होती. कुछ तो गड़बड़ है कांग्रेस के दिमाग. नहीं नहीं कांग्रेस के इस कैंपेन में.
2: आपने मीम को भी फैक्ट चेक कर लिया.
1: मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के कैंपेन में.
2: आई थॉट दैट वॉज यू नो द डोमेन ऑफ ओनली अ फ्यू इन दिस कंट्री.

0: get to fact check even a meme, but good, good, good.
1: लेकिन अगर, आपको भी अगर, लेना चाहिए, अगर दिमागी नक्सल पे बीजेपी की वो जो कैंपेन है वो वायलेंस की कॉल है तो फिर ये क्या है?
2: ये कुछ भी नहीं है,
0: कुछ नहीं, ये तो मतलब
1: मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि क्योंकि दरअसल जब आप किसी तरह की मीम या कैंपेन चलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। उसमें आप देखिए, वो कोई ऐसा थोड़ी रहा है कि कोई कह रहे हैं कि नहीं सबको गोली मार देना, दिमागी नक्सल जो है उसमें एक साथ तत्तर गोलियां चल रही है, ऐसे ही चलता है। विवेक विवेक बहुत उम्रदराज है, इनको अभी समझ नहीं कि कैसे लोग बात कर रहे
3: हैं। प्रधानमंत्री जी जोक मार रहे थे जब रेड फोर्ट से उन्होंने दिमागी नक्सल कहा,
1: ना वो सीरियस थे
3: तो वो,
1: और इसीलिए उसको कैंपेन कन्वर्ट किया ना।
3: अच्छा,
1: वो सीरियस है,
3: उसको मीम बनाना सही है या गलत है?
1: बिल्कुल, अरे मीम पे तो आप बात करते हैं। आप अनीश भाई, आप तो फिर आप तो उसी जनरेशन से आ रहे हैं, हम लोग तो थोड़ा आगे के हैं, विवेक भाई तो उम्रदराज हैं, लेकिन आप तो समझिए।
0: ओके, व्हाट डू यू गाइस मेक ऑफ दीस काइंड ऑफ मीम्स? आर दे सेफ? आर दे पुटिंग द मैसेज? आई से दैट
4: दिस इज वेरी रॉन्ग बाय कांग्रेस बिकॉज़ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट्स डेटा, लाइक दिस इज नॉट द बीजेपी का डेटा, दिस इज डेटा व्हिच इज गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा को क्वेश्चन करना इज जेन्युइनली वेरी वेरी रॉन्ग। अगर ये डेटा गलत होता तो वर्ल्ड बैंक, IMF, 85 ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडिया के पीछे लग जाती कि आपकी ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी आप दिखाना चाह रहे हो। सो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा को क्वेश्चन करना इज वेरी, आई डोंट नो इफ इट इज लीगल, बट दिस इज वेरी बैड।
0: ओके, बट व्हाट डू यू मेक ऑफ द काइंड ऑफ मैसेजिंग? आर यू ओके विद दीज मीम्स? बिकॉज एवरीवन हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट दिमागी नक्सल एंड द यूज ऑफ गन्स ओवर देयर, बट ये चाय बियर ठीक लग रहा है आपको?
4: मतलब इसमें कुछ इशू नहीं है, मतलब इट्स लाइक ये तो मीम मटीरियल है, मीम मटीरियल में वो कुछ भी डाल सकते हैं, बट जो मैसेज आ रहा है
0: हुआ?
4: हाँ, मैसेज जो कन्वे हो रहा है वो गलत है।
0: अच्छा, आपको लग रहा है मैसेज भी गलत है?
4: हाँ, मतलब वही, क्योंकि दैट इज इंडिया का डेटा।
1: चाय को बियर टाइप का।
5: द क्वेश्चन लाइज हियर सर, बार बार पूछ रहे हैं, डिफाइन दिमागी नक्सल, डिफाइन दिमागी नक्सल। सर, यू डिफाइंड अ भक्त, you डिफाइंड अनंत भक्त।
6: आई विल टेल यू
5: हु इज अ भक्त।
6: आई विल टेल यू,
5: बिकॉज़ जस्ट जस्ट अ मिनट सर, लेट मी फिनिश सर। आई फील दैट यू शुड वर्क हार्डर ऑन द मैसेंजर देन यू वर्क ऑन द मैसेज। मियरली बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड समबडी अ दिमागी नक्सल फ्रॉम द रेड फोर्ट is because is the reason why we are debating on dimagi naxal. Similarly, the term cockroach was coined by the Chief Justice of India. That led to...
0: What do you mean by you should work harder on the messenger because, rather than the message?
5: Yes, so the messenger is Prime Minister. That is why we are actually debating on Naxalwad and this. If any of us have talked about any person, have told him that, okay, you are a dimagi naxal, it wouldn't have made any
3: obviously
5: difference.
3: Yeah, you are, but right. your analogy is dangerous. Yeah. Because the Chief Justice of India said cockroach,
5: yeah.
3: The cockroaches came together and the education minister resigned. Prime Minister said dimagi naksal, dimagi naksal have come together, who is resigning?
0: Anish, master stroke nikal liya bhai. Who knows, somebody's resignation is now going to be sought on the basis of
3: the dimagi naksal. The point is, you hurl and abuse and we will make it into a joke and that joke will then be on you.
0: Okay, the joke is going to be eventually on the BJP if they persist with this, Dr. Ranganathan.
7: No, first of all, I don't know why in this age of social media and Gen Z, Anish consistently feels that he will not be fact-checked. Can I please ask Anish, when he in a blasé fashion says this cockroach was used, what was exactly the Chief Justice of India's remark on cockroaches? Please tell me. I want to hear it from the horse's mouth. Tell me.
3: Dr. Ranganathan, I agree with you completely. The problem is that the Chief Justice at that moment had said that there were certain petitioners over there who were lazy and unemployed. The poor guy who was filing the petition unfortunately should not have filed the petition, but the tone and tenor of the Chief Justice was wrong.
7: Acha, ab tone and tenor.
3: Par abhi uska mazak udaya jayega. Out of context, aap Rahul Gandhi ke statement ko bhi lete ho. To Chief Justice ke statement mein out of context kisi ne le liya. To phir kya dikkat hai?
7: Aap le rahe ho. आप ले रहे हो।
3: मैं कहा देश का
6: दुनिया ने ले लिया, पब्लिक ले रहा है भाई। आनंद जी, देश खड़ा हो गया था जंतर मंतर पे उस एक शब्द कॉकरोच पे।
1: सारे दिमागी नक्सल आ जाए एक बार,
6: ये सारे बच्चे बैठे हैं,
1: सारे दिमागी नक्सल
0: सामने। यस, वी कैन हियर यू।
7: यस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। आई सेड दिस हाफ एन आवर अगो। The fact is that all the problems that the brilliant Gen Zs are highlighting have previously been highlighted by every segment age-wise of the population. We have been shouting hoarse about the bad condition of roads, about the subsidy, the freebies. We've been shouting hoarse about the school system. We've been shouting hoarse about the reason why the education minister must resign. Did the government listen to us? No, they didn't. When they heard Gen Z was because they came on to the streets. So what is the message that is going on? Not that some social media meme would work or some communication one way or two way would work. That anarchy would work. That is the message. Accept it.
5: Not anarchy.
0: Okay.

0: government declared as a dimagi naxal because you ask questions.
1: Yes. How do you expect the young people then?
2: Padmaja, Bharat mein social media par koi rok nahi hai. यूथ जो मन में आता है वो सवाल पूछता है, जो मन में आता है वो मीम बनाता है, जहां मन करता है वहां प्रदर्शन करता है, और अगर उसके बाद अगर उसके
0: 15 साल की बच्ची घर में घुस करके उससे माफी मंगवाई
2: एक
0: और उसने फिर से सोशल मीडिया पे डाला है और कहा मोदी जी जो खाना खा लो अनसेल दैट
2: मत कीजिए,
0: ये है फ्रीडम।
2: नहीं नहीं मत कीजिए, मत कीजिए ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे गाली, ऐसे गाली देने को मत जस्टिफाई
1: कीजिए। सवाल पूछने की आजादी है,
2: गाली देने की नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गालियां देने की आजादी होनी चाहिए,
1: नहीं होनी
2: चाहिए, नहीं नहीं होनी चाहिए।
0: उसको ह्यूमिलिएट किया, उसके पेरेंट्स को हैरेस किया, उसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाई,
2: क्वेश्चनिंग फ्रीडम।
0: प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने सबको माफ कर दिया,
2: गाली देने की आजादी नहीं होनी चाहिए,
0: कुछ नहीं गाली
2: नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर उसको रियलाइज अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर विवेक जैसे लोग उनको अपने साथ
0: देखिए, सुनिए सुनिए,
2: उस तरह की गालीबाजी, गालीबाजी को आप नॉन एस्टिमेट
0: लड़का दे चलेगा, लड़की ने जानकर बंद
2: चलेगा,
0: संभाल कर इनके पेट में
2: लड़का भी क्यों देगा,
0: लड़की ने गाली दे दी तो इनके पेट में लड़का देगा, कोई
2: मेरे लिए गाली मुद्दा आपके लिए लड़का
1: I think the point you are making here is more of a moral point, but the government of India cannot stop anyone from saying what they want on social media.
2: हाँ,
1: तो बात यहाँ पर political हो
2: गया।
1: क्या बात है?
2: अगर
1: वो बच्ची
0: लोग उसके घर में गए,
2: आके कहती है कि हो गया, उसकी मदर कहती है कि पीएम, और उसके बाद वो आके कह रही नहीं नहीं मेरा डर खत्म हो गया, ठीक है भाई गाली दो, कौन मना करता
1: है? And that young girl has the right and she should use her legal recourse to file cases against people who are abusing her. She has the right. Let him also speak. Let him also speak.
3: I have one very simple question. आपने कहा है कि गाली गलौज देना गलत है, डेथ थ्रेट देना, रेप थ्रेट देना, उसके घर पे गुंडे भेजना, ये गलत नहीं है,
2: बिल्कुल गलत
3: है। एक्शन किसके खिलाफ ली जाती है? लड़की के खिलाफ। आठ लोग जो घर पे पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन ली गई है या नहीं ली गई है? डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट दी गई है, उनके खिलाफ एक्शन ली गई है नहीं ली गई है? जयपुर डायलॉग के फाउंडर के खिलाफ एक्शन ली गई है नहीं ली गई है? क्या चल रहा है सर?
1: You know what we've actually seen in play over here is how social media can end up being a very very dangerous and double-edged sword. Look what happened. Yes, that young lady, for whatever reason, irrespective of whatever she said, she went very viral, and she went viral voluntarily. Unfortunately though, this huge blowback happened, and whoever is traumatizing her, threatening her, should face the heavy hand of the law. 30 seconds, Dr. Ranganathan, then I want to take the last set of questions. Yes.
4: Yeah, sorry to use a Gen Z meme. कभी कभी तो लगता है कि सिर्फ अपन ही सच बोलता है. You know, when Vivek Srivastav says कि गाली देने में क्या प्रॉब्लम है, he was the one who until a few weeks ago was defending the execrable गाली that Udayanidhi Stalin made against Trisha Shah and the Chief Minister of तब कह रहे थे सारे सब ठीक है, गाली तो दी है. And as far as Harshvardhan ji is concerned, he is totally wrong when he says गाली should be prosecuted. Who decides what is a गाली, what is not? Yes. अगर मैं कल आपको कहूँ कि हिंदू सबसे घटिया जानवर है, आप कहेंगे इसको बैन कर दो, आप खुद
1: यू नो, आई लव विवेक श्रीवास्तव, दिस इज टिपिकल लेफ्ट बिहेवियर. व्हेन द क्वेश्चन वाज टू हिम, ही वाज क्वाइट एज अ माउस, द मोमेंट द कैनन वाज टर्नड टू हर्षवर्धन जी, ही रिस्पोंडेड विद एन एम्फैटिक यस, दैट इज वेयर ऑल द एम्फेसिस वाज
2: देयर. ओनली 30
1: सेकंड्स, ओनली 30 सेकंड्स. यस,
2: मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी लड़का या लड़की इस तरह की गालियां पब्लिकली दे किसी भी मूवमेंट में, किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता. और मैं इसके हर बीच में नहीं, मैं हूं मोरल पुलिस अपने लिए, आप मत होइए, आप मत होइए, लेकिन मैंने कतई ये नहीं कहा कि उसे प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए. मैंने उसी सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर उस बच्ची ने माफी मांग ली तो ये बात खत्म कर दी जानी चाहिए. लेकिन उसका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उसका डर खत्म हो गया, गाली देके डर खत्म हो गया, ये तो कौन सी बात है? ये तो कोई भी कर सकता है.
1: ओके, नाउ आई कम टू द क्वेश्चन, कैन सोशल मीडिया एंड अप बीइंग अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, नॉट जस्ट फॉर दिस यंग लेडी बट इवन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज? ठीक है, आपने किसी और पे तो मीम बना दिया, बट then the shoe will be on the other foot also, na? वो भी आप पे बहुत खतरनाक meme बना सकते हैं.
5: Exactly. My name is Rama Shukla. पहले तो मैं एक question लेना चाहूँगी. सर ने mention किया था स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में. Then सर ने बोला, counter किया कि ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी के खिलाफ बोले जाते हैं, उनको बुलवाए जाते हैं. But सर,
2: एक मिनट थोड़ा मैं fact check कर दूँ. मैंने social media पर वो बात कही थी. स्वतंत्र को तो मैं

0: जानता भी नहीं हूँ वो क्या ये बोल रहे हैं। मैं उसके लिहाज मैंने कहा था सोशल मीडिया पर ऐसे ढेर सारे आईटी सेल के ट्रोल्स हैं, आईटी सेल कांग्रेस से जुड़े हैं जो प्राइम मिनिस्टर पर इस तरह की कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं। मैं करेक्ट कर
1: तो सर मैं आपको
0: बस कोई उसका लेना देना कौन है जानता नहीं।
1: अक्सर से देखते हैं सर, हमें बताएं हमें क्या बोला जाता है, ऐसे देश में सृजन कैसे होगा जब जहां पर इनह्यूमन जैसे वर्ड जैसे दिमागी नक्सल को यूज करा जाता है, राइट? हमें कौन अकाउंटेबिलिटी देगा? सर आप यहां पे बैठे, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। एक बच्चा भारत में पैदा हुआ है और अभी वो पैदा ही हुआ है, उसे नहीं पता कि ये नक्सल शब्द है क्या, उसे सिखाया जा रहा है, वो भी एक ऐसे वक्ता से उसे सिखाया जा रहा है जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
0: ये आपने कैसे कह दिया कि उस बच्चे को ये सिखाया जा रहा है? अगर कोई एंटी इंडिया है, अगर कोई नक्सलियों के साथ खड़ा है, अगर कोई इस देश के आदिवासियों के अधिकारों पर हमला कर रहा है, तो उसके बारे में देश के बच्चों को नहीं जानना चाहिए? आप कैसी बात कर रही हैं? और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का काम है देश के लिए जो भी थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करना।
1: सर व्हाट अबाउट मणिपुर? सर
0: ने कहा कि हमारे नक्सल
1: सर व्हाट अबाउट मणिपुर? सर
0: मुझे लगता है सही उसको संदर्भों में समझने की जरूरत है। जब आप ये कहते हैं बच्चे को नहीं सिखाया जा रहा है, जो भी समझने लायक लोग हैं उनका
1: सर हमें ये क्यों नहीं बताया जा
0: रहा, नक्सल की पहचान कराई जा रही है,
2: बच्चे को धमकाया जा रहा है।
1: सर इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
2: आपको धमकाया गया है,
1: ओनली 10 सेकंड। इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसको डिग्निटी के साथ मेंटेन करना क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? सर एक पार्टी दूसरे पार्टी पर वार क्यों कर रहा है? क्या सिखाया जा रहा है?
2: सर फासिस्ट है। और आप जो है ज्यादा सवाल पूछेंगी तो आप दिमागी नक्सल हैं और आपको प्राइम मिनिस्टर समझा नहीं रहे थे, धमका रहे थे।
3: ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया लेबलिंग
0: फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, फासिस्ट फ्रॉम चाइना,
3: ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया लेबलिंग, अगेन लाइक वी सेड इन द बिगिनिंग, इट कैन बी अ डबल एज्ड सॉर्ड इफ यू coin things like andhbhakt, gomutra drinkers, dimagi naksal, then eventually it's going to cut both ways. Yes, 30 seconds ma'am, ask your question.
4: Hi, I'm Nivedita and I have a question for sir. You said ki 15 साल की बच्ची उसने गाली दे दिया, छोड़ दो उसको। सो इज़ इट ओके फॉर अ टीनेजर और एनी वन हु इज़ अंडर द लीगल एज टू कस एट द पीएम? बिकॉज वो वहाँ प्रोटेस्ट में गई, शी वॉज नॉट विथ हर पेरेंट्स और समवन हु इज़ यू नो अबव द लीगल एज। सो इज़ इट फाइन कि हम पीएम को ऐसी ही गाली दे दें एंड देन एनी वन वुड बी फ्री टू डू एनी थिंग एंड से वट एवर दे वॉन्ट टू, राइट?
2: प्रैक्टिकल, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बोलूँगा, लोग अग्री करें ना करें, स्कूल के बच्चे आपस में गालियाँ देते हैं हाँ कि ना? कॉलेज के बच्चे आपस में गालियां देते हैं, खासकर बॉयज, हाँ कि ना? हॉस्टल में गालियां चलती हैं, हाँ कि ना? देते हैं ना? एक पंद्रह साल, एक मिनट, एक मिनट,
0: लेकिन जवाब नहाते हैं,
2: सुनिए सुनिए,
0: विवेक श्रीवास्तव बाथरूम में बिना कपड़ों के नहाते हैं, हाँ कि ना?
2: सुनिए,
0: आप कैसी बात कर रहे हैं?
2: कितना डर गए, ये डर लगता है, देखिए ये होता है डर,
0: समझा रहे,
2: इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डर, इसको कहते हैं मॉरल पोल्यूशन। आप क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी,
0: कभी भी पॉजिटिव नैरेटिव पर बात नहीं करते,
2: किससे करेंगी,
0: देश के बच्चों को बरगलाना चाहते हैं, कमाल की बात।
4: Culture is coming to question.
3: The Indian, let give her 10 seconds.
4: The Indian culture, what we are taught to respect our elders, PM bhi chali chhod dete hain, but he is elder to us. And as kids, as teenagers, we should teach them what is right, what is wrong. Unko agar PM ke baare mein kuch bolna tha, that she doesn't like the PM, she could have said it. But using those words, that was not correct.
3: Okay, I want to very very quickly before we go down this road, 30 seconds only, Anish. Then I want to really show you one last video. Yes, 30 seconds. Go on, Anish.
5: The simple answer is that when BJP MPs do it, it's okay. When the abuse goes towards the Prime Minister, it's not okay.
4: I'm not saying about a PM or.
5: The problem is today you have a defamation case that can be filed against somebody for hurling abuses. You cannot send goons to their house for filing abuses.
4: Definitely, I agree with you, sir. We can take action for that as well.
5: But
4: I'm
5: why
4: not
5: is that action now?
4: BJP
5: can the BJP
4: ki...
5: now, if there is somebody
4: sir,
5: who's abusing the
4: is
5: Prime
4: BJP.
5: Minister and somebody you abuse the Prime Minister hypothetically and somebody shows up to your house.
4: Yes, sir.
5: Assuming they are BJP supporters.
4: It's not, we should take action.
5: Can the BJP wash its hands off of their supporters?
4: I am not with BJP or with anyone. I'm just saying that he is elder to us. He is the PM of our country.
5: File a case. The court will decide whether it's defamation or not. You are not the law. I am not the law. Nobody is the law.
0: PM ने किसी को नहीं भेजा, लेकिन शरद पवार के ऊपर टिप्पणी करने पर लोग चले गए थे गुंडे मारने.
4: And also,
0: नेवी वेटरन का सर फोड़ दिया था.
5: आप देखो,
0: केतकी चिताले जेल में भेज दिया था.
5: Conveniently,
0: एक नहीं है. जाने कितने ऐसे उदाहरण.
5: जब पवार साहब ने एक शब्द नहीं कहा केतकी चिताले पर, शरद पवार पे आप नाम करोगे? जब
0: आप जेल से नहीं
5: लोगों का सर खोल रहे आप
6: जेल से नहीं
3: certain red lines should never be crossed, whether it's in real life or on social media. One, it is not okay to threaten violence irrespective of who that person is, either to somebody who holds a constitutional post or somebody who is simply a civilian. But I want to end by showing you one video. We've seen that entire

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
2: अरे मेरे राजा।

0: and Tamil Nadu Assembly, DMK raises surge in crime, demands action against TVK leaders. Vijay says will respond soon. Hope opposition will not run away. Telangana Mantri Konda Sureka sacked action after row of daughter's remarks against Chief Minister Revanth Reddy. Writes to Kharge, alleges political marginalization under Revanth Reddy. NDTV reveals the devastating human cost of the Nepal tragedy. NDTV reporters reach makeshift burial grounds as search and rescue ops enter day 9th and death toll crosses 1,200. And well, we're starting off with how politics has now erupted over the appointment of Air Marshal Jitendra Mishra, retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Well, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the RAF, also served during Operation Sindoor. He has now expressed gratitude for the new opportunity. Congress has, of course, raised questions over the appointment and said that, "I wonder if there is some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here." The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed.
1: जी नमस्कार, आज मैंने ट्रस्ट की पहली बैठक अटेंड करी है और पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहां पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है। अब अगले 2-3-4-5 दिन जहां तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूँगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूँगा। जब मैं इसको भली भांति से समझ लूँगा तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूँगा।
2: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है, ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो चाहे वो पैसों की लूट हो। और अगर ऑफिसर ही करना है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे। वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि आरएसएस को ये मंदिर चाहिए, आरएसएस को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है। चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो।
3: Both Congress and Pakistan have got sleepless nights. जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, ये बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है। जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था, इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं एक फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे।
4: फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर, श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी।
5: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
6: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा।

0: और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता मीन्स द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी दोनों बढ़ेगी।
1: Well, the Shuddhikaran Rao is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action. Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who performed the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
2: काश नड्डा जी को एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
3: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बॉटलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
1: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
4: Duniya ke kai hisson mein संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
5: रोटी कपड़ा और मकान चार गुना हुए यह सामान, सच्चाई देश की हकीकत यह है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के

0: पूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
1: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 पीरियड। But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
2: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और ये हालत तो ये, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
3: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyunsin Hwang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
4: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. If I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
3: And well, a political controversy has emerged from BJP Rajya Sabha MP Raghav Chadda's name deleted from the Punjab Special Intensive Revision Electoral Draft List, where he has been marked as permanently shifted. He has called political vendetta by the Aam Aadmi Party government, claiming that government officials involved in the SIR process were responsible for the classification. But the Aam Aadmi Party has hit back, saying SIR is conducted by the Election Commission and not the state government. AAP also alleges that Chadda, who claims that he's living in Delhi, is trying to get his voter registration shifted to Delhi through a backdated procedure.
5: कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन को चलाती है, और जहां जहां इलेक्शन होती है वहां वहां जितने भी लोग होते हैं अपोजिशन के उनके वोट काटती है। ये बड़ी बड़ी एग्जांपल देश के सामने है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, 31 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पॉलिटिकल बेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें मिस्टर राघव चड्डा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको तुरंत रोकना चाहिए।
6: राघव चड्डा कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्डा दिल्ली में नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं। मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए। भाई एसआईआर के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए, ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से किराएदार मकान नंबर 6 में भी शिफ्ट हो गया ना, तो भी आपने उसका वोट काट दिया। आपने कहा क्योंकि आपका 5 में था वोट, अब 6 में कैसे होगा, 6 में दोबारा बनाना, 5 का तो काटेंगे, यही किया ना दिल्ली में आपने। फिर भाई आप राघव चड्डा का वोट क्यों नहीं काटेंगे? क्या इस सरकार ने वीआईपीओं के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून बना दिया है? अगर बना दिया है तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है।
3: Meanwhile, Vijay has announced major plans for Tamil Nadu, including an Olympic city, a motorsport city, and a new secretariat complex. The Olympic city will feature world-class training facilities and residential accommodation, while the motorsport city will include a racing track for international events. The 20 lakh square foot secretariat complex will cost 1200 crore rupees. Fort St.

0: Vijay versus Udayanidhi in Tamil Nadu Assembly. DMK raises surge in crime, demands action against TVK leaders. Vijay says will respond soon. Hope opposition will not run away. Telangana Mantri Konda Sureka sacked. Action after row of daughter's remarks against Chief Minister Revanth Reddy. Writes to Kharge, alleges political marginalization under Revanth Reddy. NDTV reveals the devastating human cost of the Nepal tragedy. NDTV reporters reach makeshift burial grounds as search and rescue ops enter day 9th and death toll crosses 1,200. And well, we're starting off with how politics has now erupted over the appointment of Air Marshal Jitendra Mishra, retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Well, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the RAF, also served during Operation Sindoor. He has now expressed gratitude for the new opportunity. Congress has, of course, raised questions over the appointment and said that, "I wonder if there is some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here." The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed.
1: जी नमस्कार. आज मैंने ट्रस्ट की पहली बैठक अटेंड करी है और पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहां पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है. अब अगले 2-3-4-5 दिन जहां तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूँगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूँगा. जब मैं इसको भली भांति से समझ लूँगा तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूँगा.
2: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है, ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो चाहे वो पैसों की लूट हो. और अगर ऑफिसर ही करना है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे. वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि आरएसएस को ये मंदिर चाहिए, आरएसएस को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है. चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो.
3: Both Congress and Pakistan have got sleepless nights. जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, ये बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है. जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था, इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं एक फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे.
4: फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी.
5: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी. अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है. और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है.
6: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं वो ध्यान में रख कर लिया होगा, और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता मीन्स द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी दोनों बढ़ेगी।
0: Well, the Shuddhikaran Rao is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action. Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who performed the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
7: Kash Nadda ji ko ek patra likhkar याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
8: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बोतलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
0: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
9: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
10: रोटी, कपड़ा और मकान, चार गुना हुए ये सामान। सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी।

0: people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
1: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बड़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है. आज आप देखिए जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए. तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए. और यहाँ हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है. तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है.
2: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyunsin Huang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
3: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. If I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
2: And well, a political controversy has emerged from BJP Rajya Sabha MP Raghav Chadda's name deleted from the Punjab Special Intensive Revision Electoral Draft List, where he has been marked as permanently shifted. He has called political vendetta by the Aam Aadmi Party government, claiming that government officials involved in the SIR process were responsible for the classification. But the Aam Aadmi Party has hit back, saying SIR is conducted by the Election Commission and not the state government. AAP also alleges that Chadda, who claims that he's living in Delhi, is trying to get his voter registration shifted to Delhi through a backdated procedure.
4: कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन को चलाती है, और जहाँ जहाँ इलेक्शन होती है वहाँ वहाँ जितने भी लोग होते हैं अपोजिशन के उनके वोट काटती है. ये बड़ी बड़ी एग्जांपल देश के सामने है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, 31 लाख लोगों के वोट काट दिए गए. आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं. पॉलिटिकल बेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें मिस्टर राघव चड्डा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको तुरंत रोकना चाहिए.
5: राघव चड्डा कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्डा दिल्ली में नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं. मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए. भाई एसआईआर के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए, ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से किराएदार मकान नंबर 6 में भी शिफ्ट हो गया ना, तो भी आपने उसका वोट काट दिया. आपने कहा क्योंकि आपका 5 में था वोट, अब 6 में कैसे होगा, 6 में दोबारा बनाना, 5 का तो काटेंगे, यही किया ना दिल्ली में आपने. फिर भाई आप राघव चड्डा का वोट क्यों नहीं काटेंगे? क्या इस सरकार ने वीआईपीओं के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून बना दिया है? अगर बना दिया है तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है.
2: Meanwhile, Vijay has announced major plans for Tamil Nadu, including an Olympic city, a motorsport city, and a new secretariat complex. The Olympic city will feature world-class training facilities and residential accommodation, while the motorsport city will include a racing track for international events. The 20 lakh square foot secretariat complex will cost 1200 crore rupees. Fort St. George will be preserved for its heritage value. The announcements have drawn political fire. The DMK questions Vijay's prime ministerial ambition, saying that he lacks an absolute majority. The BJP says Vijay should first fix Chennai's roads, water and power shortages, tackle traffic and focus on basic amenities before coming out with such huge plans for the state.
6: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாக பாதுகாத்து அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்கால தலைமுறைகளுக்கும் அறியும் வகையில்

0: गाली देने की आजादी नहीं होनी चाहिए,
1: कुछ नहीं गाली
0: नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर उसको रियलाइज अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर विवेक जैसे लोग उनको अपने साथ
1: देखिए, सुनिए
0: उस तरह की गालीबाजी, गालीबाजी को आप
2: लड़का
1: दे चलेगा, लड़की ने जलकर
0: चलेगा, कमाल
1: को इनके पेट में
0: लड़का भी क्यों देगा,
1: लड़की ने गाली दे दी तो इनके पेट में
0: मेरे लिए गाली मुद्दा आपके लिए
2: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैनॉट स्टॉप एनी वन फ्रॉम सेइंग व्हाट दे वांट ऑन सोशल मीडिया। हाँ तो बात यहाँ पर पॉलिटिकल
0: पॉलिटिकल लोग उसके घर में कहती है कि हो गया, उसकी मदर कहती है कि पीएम, और उसके बाद वो आके कह रही नहीं नहीं मेरा डर खत्म हो गया, ठीक है भाई गाली दो, कौन मना करता है।
2: एंड दैट यंग गर्ल हैज द राइट एंड शी शुड यूज हर लीगल रिकॉर्स टू फाइल केसेस अगेंस्ट पीपल हु आर अब्यूजिंग,
1: शी हैज द
2: लेट हिम आल्सो स्पीक।
3: आई हैव वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने कहा है कि गाली गलौज देना गलत है, डेथ थ्रेट देना, रेप थ्रेट देना, उसके घर पे गुंडे भेजना, ये गलत नहीं है,
0: बिल्कुल गलत है।
3: एक्शन किसके खिलाफ ली जाती है, लड़की के खिलाफ, आठ लोग जो घर पे पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन ली गई है या नहीं ली गई है, डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट दी गई है उनके खिलाफ एक्शन ली गई है नहीं ली गई है, जयपुर डायलॉग के फाउंडर के खिलाफ एक्शन ली गई है नहीं ली गई है, क्या चल रहा है सर?
2: यू नो व्हाट वी हैव एक्चुअली सीन इन प्ले ओवर हियर इज हाउ सोशल मीडिया कैन एंड अप बीइंग अ वेरी वेरी डेंजरस एंड डबल एज्ड सोर्ड। लुक व्हाट हैपेंड, यस दैट यंग लेडी फॉर व्हाटएवर रीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर शी सेड शी वेंट वेरी वायरल एंड शी वेंट वायरल वॉलंटरली, अनफॉर्चुनेटली दो दिस ह्यूज ब्लोबैक हैपेंड एंड हुएवर इज traumatizing her, threatening her, should face the heavy hand of the law. 30 seconds, Dr. Ranganathan, then I want to take the last set of questions. Yes.
4: Yeah, sorry to use a Gen Z meme. Kabhi kabhi to lagta hai ki sirf apuni sach bolta hai. You know, when Vivek Srivastav says ki gali dene mein kya problem hai, he was the one who until a few weeks ago was defending the execrable gali that Udayanidhi Stalin made against Trisha Shah and the chief minister of tab. Keh rahe the, sare sab theek hai, gali to di hai. And as far as Harshvardhan ji is concerned, he is totally wrong when he says gali should be prosecuted. Who decides what is a gali, what is not? Yes. Agar main kal aapko kahun ki hindu sabse ghatiya janwar hai, aap kahenge isko ban kar do, aap khud
2: you know I love Vivek Srivastav. This is typical left behavior. When the question was to him, he was quiet as a mouse. The moment the cannon was turned to Harshvardhan ji, he responded with an emphatic yes. That is where all the emphasis was there. Only 30 seconds. Yeah,
5: main fir keh raha hu, कोई भी लड़का या लड़की इस तरह की गालियां पब्लिकली दे किसी भी मूवमेंट में, किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। और मैं सिर्फ बीच में नहीं,
2: बीच में नहीं,
5: मैं हूं मोरल पुलिस अपने लिए, आप मत होइए
1: बच्चे, बात
5: आप मत होइए
1: बच्चे, हर स्कूल में कॉलेज में बात।
5: लेकिन मैंने कतई ये नहीं कहा कि उसे प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, मैंने उसी सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर उस बच्ची ने माफी मांग ली तो ये बात खत्म कर दी जानी चाहिए। लेकिन उसका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं उसका डर खत्म हो गया, गाली देके डर खत्म हो गया, ये तो कौन सी बात हुई, ये तो कोई भी कर सकता
2: है। ओके, नाउ आई कम टू द क्वेश्चन, कैन सोशल मीडिया एंड अप बीइंग अ डबल एज्ड सोर्ड, नॉट जस्ट फॉर दिस यंग लेडी बट इवन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, आपने किसी और पे तो मीम बना दिया, बट then the shoe will be on the other foot also, na? वो भी आप पे बहुत खतरनाक meme बना सकते हैं।
6: Exactly. My name is Rama Shukla. पहले तो मैं एक question लेना चाहूँगी, सर ने mention किया था स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में, then सर ने बोला, counter किया कि ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी के खिलाफ बोले जाते हैं, उनको बुलवाए जाते हैं, but सर
5: थोड़ा मैं fact check कर दूँ, मैंने सोशल मीडिया पर वो बात कही थी, स्वतंत्र को तो मैं जानता भी नहीं हूँ क्या ये बोल रहे हैं, मैं उसके लिहाज मैंने कहा था सोशल मीडिया पर ऐसे ढेर सारे आईटी सेल के ट्रोल्स हैं, आईटी सेल कांग्रेस से जुड़े हैं जो प्राइम मिनिस्टर पर इस तरह की कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, मैं करेक्ट कर
6: तो सर मैं आपको
5: बस कोई उसका लेना देना नहीं, कौन है मैं जानता नहीं।
6: अक्सल से देखते हैं सर, हमें बताएं हमें क्या बोला जाता है, ऐसे देश में सृजन कैसे होगा जब जहां पर इनह्यूमन जैसे वर्ड जैसे दिमागी नक्सल को यूज करा जाता है, राइट? हमें कौन अकाउंटेबिलिटी देगा? सर आप यहां पे बैठे, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं, एक बच्चा भारत में पैदा हुआ है और अभी वो पैदा ही हुआ है, उसे नहीं पता कि ये नक्सल शब्द है क्या, उसे सिखाया जा रहा है, वो भी एक ऐसे वक्ता से उसे सिखाया जा रहा है जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
5: ये तो ये आपने कैसे कह दिया कि उस बच्चे को ये सिखाया जा रहा है? अगर कोई एंटी इंडिया है, अगर कोई नक्सलियों के साथ खड़ा है, अगर

0: इस देश के आदिवासियों के अधिकारों पर हमला कर रहा है तो उसके बारे में देश के बच्चों को नहीं जानना चाहिए? आप कैसी बात कर रही हैं? और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का काम है देश के लिए जो भी थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करना।
1: सर व्हाट अबाउट मणिपुर? सर
0: उन्होंने कहा कि हमारे नक्सल
1: व्हाट अबाउट मणिपुर? सर
0: मुझे लगता है सही उसको संदर्भों में समझने की जरूरत है। जब आप ये कहते हैं बच्चे को नहीं सिखाया जा रहा है, जो भी समझने लायक लोग हैं उनका दिमागी नक्सल की पहचान कराई जा रही है।
2: बच्चे को धमकाया जा रहा
1: है सर। इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
2: आपको धमकाया गया है?
1: ओनली 10 सेकंड। इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसको डिग्निटी के साथ मेंटेन करना क्यों नहीं सिखाया जा रहा है सर? एक पार्टी दूसरे पार्टी पर वार क्यों कर रहा है? सिखाया जा रहा है सर,
2: फासिस्ट है। और आप जो है ज्यादा सवाल पूछेंगी तो आप दिमागी नक्सल हैं। और आपको प्राइम मिनिस्टर समझा नहीं रहे थे, धमका रहे थे।
3: ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया लेबलिंग
0: फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, फासिस्ट फ्रॉम चाइना,
3: ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया लेबलिंग, अगेन लाइक वी सेड इन द बिगिनिंग, इट कैन बी अ डबल एज्ड सॉर्ड इफ यू कॉइन थिंग्स लाइक अंधभक्त, गौमूत्र ड्रिंकर्स, दिमागी नक्सल, देन इवेंचुअली इट्स गोइंग टू कट बोथ वेज। यस, 30 seconds मैम, आस्क योर क्वेश्चन।
4: हाय, आई एम निवेदिता, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर सर। यू सेड कि 15 साल की बच्ची, उसने गाली दे दिया, छोड़ दो उसको। सो इज़ इट ओके फॉर अ टीनेजर और एनी वन हु इज़ अंडर द लीगल एज टू कस एट द PM? बिकॉज वो वहाँ प्रोटेस्ट में गई, शी वॉज नॉट विथ हर पेरेंट्स और समवन हु इज यू नो अबव द लीगल एज। सो इज़ इट फाइन कि हम PM को ऐसी गाली दे दें एंड देन एनी वन वुड बी फ्री टू डू एनी थिंग एंड से वट एवर दे वॉन्ट टू? राइट,
2: प्रैक्टिकल, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बोलूँगा, लोग अग्री करें ना करें, स्कूल के बच्चे आपस में गालियाँ देते हैं, हाँ कि ना? कॉलेज के बच्चे आपस में गालियां देते हैं, खासकर बॉयज, हाँ कि ना? हॉस्टल में गालियां चलती हैं, हाँ कि ना? देते हैं ना? एक 15 साल, एक मिनट, एक मिनट,
0: लेकिन जवाब नहाते हैं, हाँ कि ना? विवेक श्रीवास्तव बाथरूम में बिना कपड़ों के नहाते हैं, हाँ कि ना?
2: सुनिए,
0: आप कैसी बात कर रहे हैं?
2: कितना डर गए, कितना डर गए, ये डर लगता है, देखिए ये होता है डर,
0: समझा रहे हैं?
2: इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डर, इसको कहते हैं मॉरल पुलिसिंग। आप क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी,
0: कभी भी पॉजिटिव
4: इंडियन कल्चर, व्हाट वी आर टॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, PM भी चलिए छोड़ देते हैं, बट ही इज एल्डर टू अस एंड एज किड्स, एज टीनेजर्स, वी शुड टीच देम व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। उनको अगर PM के बारे में कुछ बोलना था, दैट शी डजंट लाइक द PM, शी कुड हैव सेड इट, बट यूजिंग दोज वर्ड्स, दैट वॉज नॉट करेक्ट।
3: Okay, I want to very very quickly before we go down this road, 30 seconds only, Anish, then I want to really show you one last video. Yes, 30 seconds, go on, Anish.
5: The simple answer is that when BJP MPs do it, it's okay. When the abuse goes towards the Prime Minister, it's not okay.
4: I'm not saying about a PM or...
5: The problem is today you have a defamation case that can be filed against somebody for hurling abuses. You cannot send goons to their house for filing abuses.
4: Definitely,
5: that
4: I agree with you, sir. We can take action for that as well.
5: But
4: I'm
5: why
4: not
5: is that action now?
4: BJP
5: can the BJP now, if there is somebody who is abusing the Prime Minister and somebody, you abuse the Prime Minister hypothetically, and somebody shows up to your house.
4: Yes, sir.
5: Assuming they are BJP supporters.
4: It's not, we should take action.
5: Can the BJP wash its hands off of their supporters?
4: I am not with BJP or with anyone. I'm just saying that he is elder to us. He is the PM of our country.
5: File a case. The court will decide whether it's defamation or not. You are not the law. I am not the law. Nobody is the law.
0: PM ने किसी को नहीं भेजा, लेकिन शरद पवार के ऊपर टिप्पणी करने पर लोग चले गए थे गुंडे मारने।
4: And also,
0: नेवी वेटरन का सर फोड़ दिया था।
5: आप देखो,
0: केतकी चिताले जेल में भेज दिया था।
5: Conveniently,
0: एक नहीं, जाने कितने ऐसे उदाहरण।
5: जब पवार साहब ने एक शब्द नहीं कहा केतकी चिताले पर, आप नाम करोगे जब इनके आदमी लोगों का सर फोड़ रहे, आप प्राइम
0: मिनिस्टर
3: Certain red lines should never be crossed, whether it's in real life or on social media. One, it is not okay to threaten violence irrespective of who that person is, either to somebody who holds a constitutional post or somebody who is simply a civilian. But I want to end by showing you one video. We've seen that entire selfie video trend which the Prime Minister had started. A lot of people picked up on it, and we've now seen Yogi Adityanath also jump onto that trend. I want to get a quick sense of the room on what they think of Yogi Adityanath now jumping onto the selfie trend. Yes, any thoughts over here? Kyun bhai, sab log selfie video banaye, kaisa lag raha hai? What do you think of this video? Good, bad?
6: I think it's okay, but because PM Modi did the same thing. So he.
3: What do you think of this video?
7: I think okay, like it's creativity. अगर एक कर रहा है तो अगर दूसरा करना चाहता है, अगर उससे
3: अब ये सेल्फी वीडियो ही क्यों, नॉर्मल वीडियो में आप नहीं देखते क्या बोल रहे हैं?
7: अरे वो इनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में, हम ज्यादा नहीं कहते।
3: क्या लग रहा है?
5: Every person uses his camera, basically. So इन्होंने, if ये जेंजिस के साथ कनेक्ट होना चाह रहे

0: थे या फिर क्या था ये, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि उनको उनका मन हुआ तो उन्होंने कर दिया।
1: पर आपको पसंद आया कि नहीं भाई जेन जी?
0: हमें पसंद की बात नहीं, हम पहले अच्छे से फैक्ट चेक करेंगे कि रियल है या नहीं, और फिर अच्छे से बात है इनकी या नहीं, उसके बाद देखा जाए।
1: ऑलराइट, आई थिंक
2: ट्रेंड में शामिल होना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं।
1: ओके, सो दे आर
3: एंगल विल गेट बेटर ओवर टाइम।
1: ओके, 10 सेकंड्स ओनली डॉक्टर रंगनाथन।
4: Yes, please realize that if BJP forwards one Yogi Adityanath video, then the BJP forwards 20 Rahul Gandhi videos.
1: All right, I'm going to leave it at that. But I think what this young man said is very, very important. Sure, you might think that they are jumping onto the, but also to their sensibility. Thanks very much as always. It's always good to see that you are not here to be fooled. Thanks very much to our guests also joining us today. And remember, when it really matters, as always, the buck stops here on the People's Sansad.

0: को भली भांति से समझ लूंगा। जब मैं इसको भली भांति से समझ लूंगा तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूंगा।
1: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है, ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो चाहे वो पैसों की लूट हो। और अगर ऑफिसर ही करना है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे। वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि आरएसएस को ये मंदिर चाहिए, आरएसएस को अपना चलाना है सिस्टम, तो एसी के ऊपर है। चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो।
2: बोथ कांग्रेस एंड पाकिस्तान हैव गॉट स्लीपलेस नाइट्स जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। यह बयान यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं एक फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे।
3: फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्टें दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गई, क्लीन चिट मिल गई है, क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने। तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
4: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
5: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता मीन्स द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी दोनों बढ़ेगी।
6: Well, the Shuddhikaran Rao is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action. Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who performed the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
7: काश नड्डा जी को एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटित ही बहुत सारे चीजें उनके सामने लाया हूं पत्र लिखकर।
8: पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बॉटलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
6: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
9: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
10: रोटी, कपड़ा और मकान, चार गुना हुए ये सामान। सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% GDP है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
7: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 पीरियड। But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
11: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और ये हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का।

0: platform. And I had the benefit of seeing Modi a decade ago talking about AI. And I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
1: And well, a political controversy has emerged from BJP Rajya Sabha MP Raghav Chadda's name deleted from the Punjab Special Intensive Revision Electoral Draft List, where he has been marked as permanently shifted. He has called political vendetta by the Aam Aadmi Party government, claiming that government officials involved in the SIR process were responsible for the classification. But the Aam Aadmi Party has hit back, saying SIR is conducted by the Election Commission and not the state government. AAP also alleges that Chadda, who claims that he's living in Delhi, is trying to get his voter registration shifted to Delhi through a backdated procedure.
2: कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन को चलाती है और जहां जहां इलेक्शन होती है वहां वहां जितने भी लोग होते हैं अपोजिशन के उनके वोट काटती है। ये बड़ी बड़ी एग्जांपल देश के सामने है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, 31 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पॉलिटिकल बेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें मिस्टर राघव चड्डा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको तुरंत रोकना चाहिए।
3: राघव चड्डा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्डा दिल्ली में नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं। मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए। भाई एसआईआर के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए, ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से किराएदार मकान नंबर 6 में भी शिफ्ट हो गया ना, तो भी आपने उसका वोट काट दिया। आपने कहा क्योंकि आपका 5 में था वोट, अब 6 में कैसे होगा? 6 में दोबारा बनाना, 5 का तो काटेंगे, यही किया ना दिल्ली में आपने। फिर भाई आप राघव चड्डा का वोट क्यों नहीं काटेंगे? क्या इस सरकार ने वीआईपीओं के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून बना दिया है? अगर बना दिया है तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है।
1: Meanwhile, Vijay has announced major plans for Tamil Nadu, including an Olympic city, a motorsport city, and a new secretariat complex. The Olympic city will feature world-class training facilities and residential accommodation, while the motorsport city will include a racing track for international events. The 20 lakh square foot secretariat complex will cost 1200 crore rupees. Fort St. George will be preserved for its heritage value. The announcements have drawn political fire. The DMK questions Vijay's prime ministerial ambition, saying that he lacks an absolute majority. The BJP says Vijay should first fix Chennai's roads, water and power shortages, tackle traffic and focus on basic amenities before coming out with such huge plans for the state.
4: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாக பாதுகாத்து அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்கால தலைமுறைகளுக்கும் அறியும் வகையில் உருவாக்கப்படும். இவற்றை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த நூற்றாண்டுகளில் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமை செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் சென்னையில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் ₹1200 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்.
5: He had not got a majority, simple absolute majority in Tamil Nadu itself. He is relying on the Congress, the Communist parties, VCK and IUML. How can he become Prime Minister? If he, once we had our asking for separate Tamil Nadu, if Vijay gets separate Tamil Nadu, he can become the Prime Minister.
6: Despite resignation threats by Congress ministers, the TVK simply refuses to accept Rahul Gandhi's leadership nationally. The Congress party meekly says that the TVK ministers and MLAs are in fan club mode, even after scathing repeated rejections of Rahul Gandhi's failed leadership by TVK. The Congress party still continues to be in a cabinet. They just issued

0: Amidst all the death, there is also a few stories of incredible survival. My colleague Sikta spoke to one of those who was in one of the tunnels in Thrissur 3. That's one of the run-of-the-river power projects. One among 34 people who managed to survive. This is his account to Sikta Dio.
1: आप हाइड्रो पावर प्लांट में काम करते थे, उस दौरान टनल के अंदर आप थे उस वक्त जब ये पूरी बाढ़ आई। हमको एक्सप्लेन करिए क्या हो रहा था अंदर टनल के, जब आप अंदर टनल में।
2: अंदर के टनल में पहले बात में हवा चढ़ गया ना, बहुत बहुत हवा आ गया। लेकिन हवा आ गया तो हम लोग को साथी और बोल रहा है कि लेकिन अभी हवा हो रही आ रहा है, हाँ भूकंप आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन बाद में हम लोग को बत्ती आया था, लेकिन बाद में बत्ती गया नहीं, लेकिन अब बत्ती गया तो अभी भागने के चांस नहीं मिला हम लोग को। अंदर में है, बहुत अंदर में है, भागने चांस नहीं मिला। लेकिन फिर एक बार बत्ती आ गया, लेकिन हम लोग को काम करने ठाउं से नीचे गिर गया और दौड़ने भागने के लिए लगी, बाहर निचकने लगी, बाहर आ गया। लेकिन बाद में क्या आ गया अपनी, हम बाहर निचकने वाला में थोड़ा दूरी वाला एक टनल था, लेकिन टनल के बाहर फिर बाढ़ी आ गया
1: पानी
2: पानी आ गया। लेकिन फिर त्यां से फर्क से 300 किलोमीटर 3 किलोमीटर से हम पौड़ी खेल के बाहर निच गया। लेकिन हम लोग आज तक क्या था, लेकिन क्या हुआ हम लोग को अभी देखे, आशा मर गया था ना, हम लोग को बांझने के आशा मर गया था।
0: Well, it's time now for us to take a short break, but NDTV will continue to track this story. It's one that's impacted millions of lives over here in Nepal. Families devastated, the death toll going up, the number of missing people going up as well. We'll take a short break at this stage. There's a lot more coming up right here on NDTV.
3: I'm on the banks of the Narayani River here in Bharatpur district. What you see now is two bodies that have just been recovered from the Narayani River. One of the bodies is now being taken to the ambulance. More than 350 bodies have already been taken out in a stretch of 50 kilometers.
0: I've come across a knapsack, obviously of a school child, and I know this because these are school textbooks.
4: A crisis of food articles, daily amenities.
3: These are live pictures of landslide happening just across the river. These are images of those who are missing.
4: Standing right in front of a monastery where the last rites.
0: This is a power substation that I'm at, which is completely destroyed.
3: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground.
5: Real-time rescue operation in the middle of Thrissuli River.
6: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
3: The deflection by the system. And it's a slow death really that Gurugram is now seeing.
6: Who failed? And this remains a campaign here on NDTV. So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV. When it really matters.
0: We are crossing a heavy ridgeline now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. So this is the Bhotekoshi River now. It used to be Thrissuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here. They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Thrissuli, and It's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not on your side.
7: We are more than 90 people here. So we are trying best.
0: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
8: Devastating floods that have struck Nepal have left behind scenes of heartbreaking destruction. Lives have been lost, families are grieving, many are still waiting desperately for news of those they love. Homes and livelihoods have been swept away, and the full measure of this tragedy is still unfolding.
1: NDTV has reached the ground zero. We are at Nuwakot area of Nepal where the flash floods have hit.
9: Welcome back, you're watching NDTV with me, Raisha Sehgal, and we are tracking all the stories that matter. Lost time for you with first headlines. Amid raging politics over India's quarter one GDP growth of 7.8%, Prime Minister Modi hails numbers, calls it India's growth story despite global uncertainties. Controversy in Kerala, Mafia Chief Minister's post condemning Grand Mufti's regressive remarks taken down. Congress calls it Facebook error. BJP accuses Satishan of appeasement politics. Vijay vs. Udayanidhi in Tamil Nadu Assembly. DMK raises surge in crime, demands action against TVK leaders. Vijay says will respond soon. Hope opposition will not run away. Telangana Mantri Konda Sureka sacked action after row of daughter's remarks against Chief Minister Revanth Reddy. Writes to Kharge alleges political marginalization under Revanth Reddy. NDTV reveals the devastating human cost of the Nepal tragedy. NDTV reporters reach makeshift burial grounds as search and rescue ops enter day 9th and death toll crosses 1200. And well, you're starting off with how politics has now erupted over the appointment of Air Marshal Jitendra Mishra, retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Well, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the RAF, also served during Operation Sindoor. He has now expressed gratitude for the new opportunity. Congress has, of course, raised questions over the appointment and said that I wonder if there is some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here. The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed.
10: जी नमस्कार. आज मैंने ट्रस्ट की पहली बैठक अटेंड करी है और पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी जहां पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है. अब अगले दो तीन चार पाँच दिन जहां तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूँगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूँगा. जब मैं इसको भली भांति से समझ लूँगा तब मैं CEO के रूप में टेक ओवर करूँगा.
11: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो चाहे वो पैसों की लूट हो. और अगर ऑफिसर ही करना है, IAS IPS ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे. वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि RSS को ये मंदिर चाहिए, RSS को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है. चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो.
12: बोथ कांग्रेस एंड पाकिस्तान हैव गॉट स्लीपलेस नाइट्स जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। यह बयान यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वही है जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे।
13: फैसला सरकार का है, ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्ट दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज के बाद जेल गए, क्लीन चिट मिल गई है, तो क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर, श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने। तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
14: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
15: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता, मींस द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी, दोनों बढ़ेगी।
9: Well, the Shuddhikaran Rao is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action. Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who performed the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
16: काश नड्डा जी को एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
17: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ

0: साफ सफाई या हवन किया है, उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाह अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बोतलें वहाँ पाई गईं। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है वो स्वयं अब सवालों के घेरे में।
1: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
3: रोटी, कपड़ा और मकान, चार गुना हुए ये सामान। सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% GDP है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
4: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू, इफ यू लुक बैक, विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 पीरियड। But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
5: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बड़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और ये हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
1: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyunsin Huang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
6: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. If I I had the benefit of seeing Modi ji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.

0: by the Election Commission and not the state government. AAP also alleges that Chadha, who claims that he's living in Delhi, is trying to get his voter registration shifted to Delhi through a backdated procedure.
1: कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की इलेक्शन कमीशन को चलाती है और जहां जहां इलेक्शन होती है वहां वहां जितने भी लोग होते हैं अपोजिशन के उनके वोट काटती है। ये बड़ी बड़ी एग्जाम्पल देश के सामने है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, 31 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है जिसमें मिस्टर राघव चड्ढा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसको तुरंत रोकना चाहिए।
2: राघव चड्ढा कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्ढा दिल्ली में नहीं रहते पंजाब में रहते हैं। मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए। भाई एसआईआर के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से किराएदार मकान नंबर 6 में भी शिफ्ट हो गया ना, तो भी आपने उसका वोट काट दिया। आपने कहा क्योंकि आपका 5 में था वोट, अब 6 में कैसे होगा, 6 में दोबारा बनाना, 5 का तो काटेंगे, यही किया ना दिल्ली में आपने। फिर भाई आप राघव चड्ढा का वोट क्यों नहीं काटेंगे? क्या इस सरकार ने वीआईपीओं के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून बना दिया है? अगर बना दिया है तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है।
0: Meanwhile, Vijay has announced major plans for Tamil Nadu, including an Olympic city, a motorsport city, and a new secretariat complex. The Olympic city will feature world-class training facilities and residential accommodation, while the motorsport city will include a racing track for international events. The 20 lakh square foot secretariat complex will cost 1200 crore rupees. Fort St. George will be preserved for its heritage value. The announcements have drawn political fire. The DMK questions Vijay's prime ministerial ambition, saying that he lacks an absolute majority. The BJP says Vijay should first fix Chennai's roads, water and power shortages, tackle traffic and focus on basic amenities before coming out with such huge plans for the state.
3: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாக பாதுகாத்து அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்கால தலைமுறைகளுக்கும் அறியும் வகையில் உருவாக்கப்படும். இவற்றை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த நூற்றாண்டுகளில் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமை செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் சென்னையில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் ₹1200 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்.
4: He had not got a majority, simple absolute majority in Tamil Nadu itself. He is relying on the Congress, the Communist parties, VCK and IUML. How can he become Prime Minister? If he, once we had, were asking for separate Tamil Nadu, if Vijay gets separate Tamil Nadu, he can become the Prime Minister.
5: Despite resignation threats by Congress ministers, the TVK simply refuses to accept Rahul Gandhi's leadership nationally. The Congress party meekly says that the TVK ministers and MLAs are in fan club mode, even after scathing repeated rejections of Rahul Gandhi's failed leadership by TVK. The Congress party still continues to be in a cabinet. They just issue empty threats and warnings. What is preventing the Congress party from withdrawing support?
6: This is not a demand. You have to identify the words. You have to clearly mention the words. This is not a demand. It is about the wish. There is a well and wish different from demand. There is no demand is there. There is a wish is there for every individual. Every individual having some unique knowledge, unique satisfaction, unique thoughts. They are expressing their wishes, that's it.
0: Sting on stories from Tamil Nadu, political face-off is brewing in Tamil Nadu with leader of opposition Udayanidhi Stalin firing fresh salvos at the Vijay Sarkar over the rise in murders and sexual crimes in the state. Udayanidhi has slammed the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, accusing his government of reducing serious crimes to a matter of personal discipline and questioning why no action has been taken against

0: Welcome back. You're watching NDTV with me, Raisha Sehgal, and we are tracking all the stories that matter. Lots of fun for you with first headlines. Amid raging politics over India's quarter one GDP growth of 7.8%, Prime Minister Modi hails numbers, calls it India's growth story despite global uncertainties. Controversy in Kerala after Chief Minister's post condemning Grand Mufti's regressive remarks taken down. Congress calls it Facebook error. BJP accuses Satish Jain of appeasement politics. Vijay vs. Udayanidhi in Tamil Nadu Assembly. DMK raises surge in crime, demands action against TVK leaders. Vijay says will respond soon. Hope opposition will not run away. Telangana Mantri Konda Sureka sacked action after row of daughter's remarks against Chief Minister Revant Reddy. Writes to Kharge alleges political marginalization under Revant Reddy. NDTV reveals the devastating human cost of the Nepal tragedy. NDTV reporters reach makeshift burial grounds as search and rescue ops enter day 9th and death toll crosses 1,200. And well, you're starting off with how politics has now erupted over the appointment of Air Marshal Jitendra Mishra, retired as the first ever CEO of Ram Mandir Trust. Well, Air Marshal Jitendra Mishra, who served for 38 years in the RAF, also served during Operation Sindoor. He has now expressed gratitude for the new opportunity. Congress has, of course, raised questions over the appointment and said that, "I wonder if there is some hidden truth behind Operation Sindoor that led to his appointment as the CEO here." The BJP, however, has hit back at the opposition over questioning the appointment and said that Congress Sena Virodhi mindset has been exposed. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav said that BJP dealt a massive blow to devotion, so it will be a huge responsibility for whoever is appointed.
1: जी नमस्कार. आज मैंने ट्रस्ट की पहली बैठक अटेंड करी है और पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहां पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना है. अब अगले 2-3-4-5 दिन जहां तक ट्रस्ट चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूँगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूँगा. जब मैं इसको भली भांति से समझ लूँगा तब मैं CEO के रूप में टेक ओवर करूँगा.
2: आस्था के नाम पर ये जो लूट हो रही है, ये आस्था के नाम पर लूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वोटों की लूट हो चाहे वो पैसों की लूट हो. और अगर ऑफिसर ही करना है, IAS IPS ऑफिसर कम हो गए क्या? सरकार को सौंप दीजिए, अपने आप करेंगे. वैष्णो देवी ट्रस्ट का नहीं होता क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट भी तो है, लेकिन चूंकि RSS को ये मंदिर चाहिए, RSS को अपना चलाना है सिस्टम, तो इसी के ऊपर है. चंदा चोरी हुई, आपने कार्रवाई क्या की? कुछ भी नहीं, जीरो.
3: Both Congress and Pakistan have got sleepless nights. जब से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, ये बयान ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी

0: की मानसिकता वही है जब इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। इससे इन्होंने हमारी फोर्सेस का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस देश के वैलर का अपमान किया है और स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जो हमेशा कहते हैं फ्रिंज मानसिकता है, जिसमें आतंकवाद या आतंकवादियों को ये अपने समय में बटला हाउस के समय पे ये आंसू बहा करते थे और फोर्सेस को ये सड़क का गुंडा कहा करते थे।
1: फैसला सरकार का है, प्रेस अपना फैसला लेता है और प्रेस के सामने चुनौती इसलिए है कि जिस तरह की बातें आई हो, एसआईटी ने जो जांच के बाद रिपोर्ट दी, एसआईटी के बाद एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज के बाद जेल गई, क्लीन चिट मिल गई है, क्रेडिबिलिटी से भी ऊपर आस्था है और आस्था पर श्रद्धा पर बड़ी चोट पहुंचाई बीजेपी ने, तो जो भी बनेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है।
2: रिटायर्ड आर्मी एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कि जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर देगी। अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैतियां डाली थी उनके न नाम पता चले हैं, न उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डकैती डाली है उनमें और महमूद गजनवी ने जिसने सोमनाथ लूटा था कोई फर्क नहीं है।
3: मुझे लगता है कि जो भी निर्णय ट्रस्ट ने लिया है वो समस्त व्यवस्थाओं, उपयोगिताओं, दक्षताओं को ध्यान में रखकर लिया होगा और ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अधिक व्यावसायिकता के साथ, अधिक क्षमता के साथ, अधिक पारदर्शिता के साथ श्री राम जन्मभूमि न्यास काम कर सके। तो मुझे लग रहा है कि और भी उन्होंने कई अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की गतिशीलता और प्रभावकता मीन्स द कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी दोनों बढ़ेगी।
4: Well, the Shuddhikaran Rao is back in focus with Congress President Mallikarjun Kharge has now written to Rajya Sabha leader of the House JP Nadda questioning why no FIR has been registered even after 24 days after an assurance of action. Kharge says Rahul Gandhi has faced an FIR for raising issues like inflation, unemployment and Dalit concerns, but Congress will not be intimidated. BJP, however, hits back. Union Minister S.P. Singh Baghel says that those who conducted that purification had no links to the Bharatiya Janata Party and claims that slogans of Allahu Akbar were raised at Kharge's program. Baghel also alleges that beer bottles were found at the venue while stressing that those who performed the havan belong to the Dalit community itself. Take a listen.
5: काश नड्डा जी को एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि 25 दिन के बाद भी उनके द्वारा राज्यसभा में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरे पत्र में मैंने स्पष्ट किया कि जो चीज़ें हमारे राज्यसभा में घटी थी वो सारे चीज़ें उनके सामने लाया हूँ पत्र लिखकर।
6: पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ साफ सफाई या हवन किया है उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है और यह पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। दूसरा, माननीय खड़गे जी का जहाँ कार्यक्रम था वो एक पवित्र स्थल है और वहाँ तमाम मजहबी नारे अल्लाहु अकबर वगैरह भी लगाए गए थे। वहाँ पर तमाम, मुझे बताया गया कि तमाम गंदगी भी थी जिसमें बियर ईयर की भी बॉटलें वहाँ पाई गई। अब राहुल गांधी जी स्वयं ये बताएं, उनको जवाब देना होगा कि दलित समाज को लेकर के जो टिप्पणी उन्होंने की है उस

0: हैं अब सवालों के घेरे में।
1: In other news, India's GDP growth of 7.8% has now triggered sharp reactions from both the government and the opposition. Prime Minister Modi today hailed the growth, saying it was achieved despite global uncertainties. Prime Minister also called 7.8% rise India's growth story. This, of course, after Congress mocked the numbers with a froth jibe on social media platform X. And within hours, the BJP hit back with its own cup tea taunt, accusing Congress of manufacturing division. While taking the analogy further, Union Minister Kiran Rijiju said that Congress was in deep intoxication and out of touch with reality, perhaps. Meanwhile, Union Minister Piyush Goyal added that ministers don't manufacture data, urging citizens to not fall for pessimism. Top economists have rejected the 2.6% growth claims by some, asserting that such calculations are erroneously done between two different series of data. This, of course, has not deterred political criticism that's coming in.
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
3: रोटी, कपड़ा और मकान, चार गुना हुए ये सामान। सच्चाई देश की हकीकत ये है। प्रधानमंत्री जी जो झूठ की गूंज कर रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर रहे इस झूठ के गूंज के सिपाही श्री सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, कह रहे हैं 2.6% जीडीपी है। वो राहुल गांधी के सिपाही नहीं है, वो इसी झूठ की गूंज के सिपाही हैं जो आप बता रहे हैं।
4: बोथ ऑफ होम कुड नॉट कंप्लीट देयर टाइम इन इंडिया और इन द गवर्नमेंट एंड फॉर द राइट रीजंस। मेनी ऑफ यू इफ यू लुक बैक विल रिमेंबर ऑल दैट द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू इन द 2012-13-14 पीरियड। But I don't know where they do not find people employed, the naysayers, who somehow cannot possibly digest that they themselves are the only jobless people left. And the only possible job left is to get onto a television panel trying to concoct or manufacture an argument.
5: अब यही है ना, सोना क्यों नहीं खरीदने का? जीडीपी बढ़ा है क्वार्टरली, अब उसका इम्पैक्ट बढ़ने का एक आम नागरिक की जिंदगी में क्या आता है वो देखना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, जीडीपी तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन यहाँ पर जो शक्कर के भाव देखिए कितने महंगे हो गए। तो मैं तो बोला था ना कि भाई बीजेपी वाले खा के मोटे हो गए, सबको डायबिटीज हो गया, इसलिए शक्कर के भाव बढ़ा दिए। और यह हालत तो ये है, पगार तो आपने नहीं बढ़ाया किसी का, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शक्कर का, टैक्सी के फेयर का, चीनी का, तुम्हारा दूध का, सबका भाव बढ़ गया, पगार किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है।
1: And beyond the GDP numbers, India's next big growth engine could be AI. NVIDIA CEO Hyunsin Huang says that India's local startups can help build a homegrown AI economy. Take a look.
6: India is one of the world's leading IT industries, and this is the beginning of a new IT platform. If I had the benefit of seeing Modiji a decade ago talking about AI, and I'm really anxious to see and very excited to see the local companies and the local startups starting in India, starting to take advantage of the technology, contributing to the technology, and then building the local AI economy.
1: And well, a political controversy has emerged from BJP Rajya Sabha MP Raghav Chadda's name deleted from the Punjab Special Intensive Revision Electoral Draft List. where he has been marked as permanently shifted. He has called political vendetta by the Aam Aadmi Party government, claiming that government officials involved in the SIR process were responsible for the classification. But the Aam Aadmi Party has hit back, saying SIR is conducted by the Election Commission and not the state government. Aap also alleges that Chadda, who claims that he's living in Delhi, is trying to get

0: वोट काट दिए गए। आप पंजाब का इलेक्शन हो रहा है तो 20 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें मिस्टर राघव चड्ढा जी उस पार्टी में हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए कि जो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको तुरंत रोकना चाहिए।
1: राघव चड्ढा कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं पंजाब में रहते हैं? कोई एक रिपोर्टर हाथ उठा के बता दे कि राघव चड्ढा दिल्ली में नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं। मैंने कहा फिर उनका हक है, पंजाब में उनका वोट होना चाहिए। भाई SIR के अंदर आपने एक तिहाई दिल्ली के वोट काट दिए ये कह के कि कोई आदमी मकान नंबर 5 से किराएदार मकान नंबर 6 में भी शिफ्ट हो गया ना, तो भी आपने उसका वोट काट दिया। आपने कहा क्योंकि आपका 5 में था वोट, अब 6 में कैसे होगा, 6 में दोबारा बनाना, 5 का तो काटेंगे, यही किया ना दिल्ली में आपने। फिर भाई आप राघव चड्ढा का वोट क्यों नहीं काटेंगे? क्या इस सरकार ने VIPs के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून बना दिया है? अगर बना दिया है तो सरकार के लिए और भी शर्म की बात है।
2: Meanwhile, Vijay has announced major plans for Tamil Nadu, including an Olympic city, a motorsports city and a new secretariat complex. The Olympic city will feature world-class training facilities and residential accommodation, while the motorsports city will include a racing track for international events. The 20 lakh square foot secretariat complex will cost 1200 crore rupees. Fort St. George will be preserved for its heritage value. The announcements have drawn political fire. The DMK questions Vijay's prime ministerial ambitions, saying that he lacks an absolute majority. The BJP says Vijay should first fix Chennai's roads, water and power shortages, tackle traffic and focus on basic amenities before coming out with such huge plans for the state.
3: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையின் பாரம்பரிய கட்டடங்களை வரலாற்று மரபுச் சின்னங்களாக பாதுகாத்து அவற்றின் பாரம்பரிய மதிப்பை வருங்கால தலைமுறைகளுக்கும் அறியும் வகையில் உருவாக்கப்படும். இவற்றை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த நூற்றாண்டுகளில் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமை செயலகம் அடங்கிய புதிய கட்டட வளாகம் சென்னையில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் ₹1200 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும்.
4: He had not got a majority, simple absolute majority in Tamil Nadu itself. He is relying on the Congress, the Communist parties, VCK and IUML. How can he become Prime Minister? If he, once we had our asking for separate Tamil Nadu, if Vijay gets separate Tamil Nadu, he can become the Prime Minister.
5: Despite resignation threats by Congress ministers, the TVK simply refuses to accept Rahul Gandhi's leadership nationally. The Congress party meekly says that the TVK ministers and MLAs are in fan club mode, even after scathing repeated rejections of Rahul Gandhi's failed leadership by TVK. The Congress party still continues to be in a cabinet. They just issue empty threats and warnings. What is preventing the Congress party from withdrawing support?
6: This is not a demand. You have to identify the words. You have to clearly mention the words. This is not a demand. It is about the wish. There is a well and wish different from demand. There is no demand is there. There is a wish is there for every individual. Every individual having some unique knowledge, unique satisfaction, unique thoughts. They are expressing their wishes, that's it.
2: Sting on stories from Tamil Nadu, political face-off is brewing in Tamil Nadu with leader of opposition Udayanidhi Stalin firing fresh salvos at the Vijay Sarkar over the rise in murders and sexual crimes in the state. Udayanidhi has slammed the Tamil Nadu Chief Minister Vijay, accusing his government of reducing serious crimes to a matter of personal discipline and questioning why no action has been taken against the TVK leaders. But Chief Minister Vijay is now ready with a counter. He says Monday is the day that he answers back, promising to respond to all questions. Taking a swipe at the opposition, Vijay also said he hopes that they will not run when the answers come.
7: தினமு நியூஸ்பேப்பர் திறந்து பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் தினமும் செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு. கறிக்கடையில கூட இந்த அளவுக்கு வெட்டமாட்டாங்க, அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் தினசரி வெட்டுக்குத்து நடந்துகிட்டு இருக்கு.